मीडियम पे 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथवीं तिथि 25 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपके साथ हूँ, आपके रेडियो मित्र रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र के द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। तो डीजे प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सामूहिक स्वर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला भजन, हरिओम शरण व उनकी साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसके अंतर्गत अभी आपने सुना हरिओम शरण व साथियों के स्वरों में गाया हुआ ये भजन। तो आइए अब सुनते हैं प्रीति सागर व साथियों के स्वरों में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना प्रीति सागर व साथियों की आवाज़ों में ये मधुर भजन। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं विजया चौधरी की मधुर आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसे आप सुन पा रहे हैं हमारे ग्वालियर केंद्र द्वारा। तो आइए कार्यक्रम में आप कार्यक्रम का ये अंतिम भजन आपको सुनाते हैं अनूप जलूटा की मधुर आवाज़ में। तो आनंद लीजिए कार्यक्रम के इस अंतिम भजन का।

0: श्रोताओं, इसी अंतिम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं तो नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तुलिका शर्मा के विचार।
1: रोज़ एक नया दिन होता है। हम हर नए दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बीते हुए दिनों की असफलताओं को भूलकर नए दिन में सफलता के नए प्रतिमान रच सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आत्मानुशासन सबसे बड़ी चाबी है जो आपको सफलता की दिशा में ले जाती है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा, किस तरह का जीवन आप जिएंगे, सुखी या दुखी, ये सब कुछ आपकी लाइफस्टाइल तय करती है। और आजकल बदलते दौर के साथ ये लाइफस्टाइल जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है। पुराने लोगों ने तो फिर भी कुछ चीज़ें पकड़ कर रखी हुई हैं, लेकिन नई जनरेशन नए दौर के साथ बदलते हुए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करती जा रही है। कहते थे पहले कि सुबह जल्दी जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना बेहद अच्छा होता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का हम सकारात्मक प्रयोग अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर कर सकते हैं। युवा और बच्चे जो सुबह जल्दी सोकर उठने के आदि नहीं हैं, ये रात में देर तक जग कर अपने काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या किसी तरह का कोई और दूसरा काम, और सुबह देर तक सोना चाहते हैं। नींद तो व्यक्ति की उतनी ही है, 8 से 9 घंटे, उतनी नींद आपके शरीर को और दिमाग को चाहिए। यदि आप रात के 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप उतनी ही देर से उठ रहे होंगे। अब लोग कहते हैं कि हम सो तो उतना ही रहे हैं, बाकी समय तो काम कर रहे हैं। वो जो सुबह

0: का समय है, इस समय आप रिलैक्स मोड में होते हैं, जब आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 बजे ऑफिस जाना है और आप 9 बजे सोकर उठ रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक घंटा है ऑफिस पहुंच जाने तक के बीच, जिस समय आपको फ्रेश भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, अपने घर के लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी करनी है, हो सकता है न्यूज़पेपर भी पढ़ना हो। तो क्या आप उस एक घंटे में ये सारी चीज़ें तसल्ली से निपटा सकते हैं? यदि आप 6 बजे उठते हैं तो ये सारी चीज़ें तसल्ली से निपटाते हुए भी आप मी टाइम निकाल सकते हैं, यानी अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर सकते हैं, और वो मर्ज़ी की चीज़ें ऐसे मनः स्थिति के साथ कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से ऊर्जावान हैं। थके हारे आकर आपको बढ़िया म्यूज़िक सुनने का भी मन नहीं करेगा, अच्छी किताब पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, मेडिटेशन करने का भी मन नहीं करेगा। सुबह जब आप रिलैक्स मोड में हैं, आपकी ऊर्जा सर्वोच्च स्तर पर है, तो आपको ये सब काम करने में भी आनंद आएगा। बहुत से लोग जागने के बाद के पहले जो 30 मिनट हैं उसे बहुत महत्व देते हैं। ये जो शुरुआती 30 मिनट हैं यही तय करते हैं कि आपका दिन कैसा बनेगा। सोचकर देखिए, यदि आप देर से उठते हैं और आपको हर चीज़ हड़बड़ी में करनी पड़ती है, तो आप कितने खिन्न झल्लाए से रहते हैं और पूरा दिन वो मूड जो है वो कैरी करते हैं। सुबह का मूड यदि आप दिन भर कैरी करते हैं, तो सोचिए आपने कितने और लोगों को खिन्न किया। मुस्कुराकर मिलने के बजाय आप जल्दी जल्दी किसी के सामने से निकल जाते हैं, तो सामने वाले का मूड भी थोड़ा सा खराब हुआ ना। और ये प्रक्रिया चलती जाती है, हम एक नेगेटिव थॉट दूसरी तरफ फेंकते हैं और वो नेगेटिव थॉट दूसरी तरफ से तीसरी तरफ जाता है। यानी आप एक पॉजिटिविटी का पुंज ना हो करके एक नेगेटिविटी का धब्बा हो जाते हैं। थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिए। इस पर कोई कह सकता है कि हम यही वक्त यदि शाम को दें, रात को दें, तब दिन भर काम करने के बाद हमारा शरीर और हमारा दिमाग थक जाता है, और रात को जब हम उसे थोड़ा वक्त देते हैं, या कह लीजिए हम रात को मी टाइम निकालते हैं, तो हम उस समय को एंजॉय नहीं कर पाते। थका हुआ हमारा शरीर, पजल्ड हुआ हमारा दिमाग हमें वो खुशियाँ नहीं दे पाता जो एक प्यारी सी नींद के बाद हमारा सुबह का समय हमें दे पाता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे माउंटेनियर्स होते हैं, ऊंचे पहाड़ पर उन्हें चढ़ना होता है, तो सबसे पहले वो बेस कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ी चढ़ाई करते हैं और वापस अपने बेस कैंप में लौट आते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप में लौटते हैं। ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते जाते हैं, लेकिन वो जो बेस कैंप है ना, वहाँ वापस लौटना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहाँ वो अपनी सारी ऊर्जा समेटते हैं, अपनी गलतियों पर विचार करते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं अगले दिन कि वो कैसे एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। तो ये जो बेस कैंप का काम है ना, ये सुबह का समय होता है। तो दिन भर की मेहनत के लिए अपने आप को सुबह तैयार कीजिए। सुबह मौसम में भी थोड़ी ठंडक होती है, चिड़ियों की चहचहाट आप सुन सकते हैं, सड़क के शोर शराबे से थोड़ा सा दूर अपने आप को सुकून दे सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना तुलिका शर्मा के विचारों को। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 और 12 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

रामचरित मानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। रिजे प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनिए गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह। तो आइए सुनते हैं कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की ठीक प्रकार देखभाल करें, जिससे उन्हें स्वस्थ बनाए रखें और उनकी बढ़वार अच्छी हो। गर्मियों का मौसम मुर्गी पालकों के लिए परीक्षा का समय होता है और जो मुर्गी पालक गर्मियों के मौसम में पक्षियों की सही देखभाल कर उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं, वही सफल मुर्गी पालक होते हैं। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं और लू के कारण पक्षी तनाव में रहते हैं, जिससे मुर्गियों के शरीर की कोशिकाएँ पानी छोड़ती हैं और इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएं शुष्क और शिथिल होने के कारण

0: मुर्गियों का शरीर सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थता हो जाता है। मुर्गी पालकों को इस अवस्था में सावधान रहना चाहिए। गर्मी से पीड़ित होने पर मुर्गियों का चेहरा लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि मुर्गी की कलगी से रक्त पसीने के रूप में बाहर आने वाला है। मुर्गियां चारों तरफ देखती हैं, चक्कर लगाती हैं, सिर इधर उधर घुमाती हैं, गर्दन या सिर में पक्षाघात जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मुर्गियां तेजी से हाँफती हैं और उनके शरीर में भारीपन तथा धड़कन और नाड़ी स्पंदन का अनुभव होने लगता है। मुर्गियां जल्दी जल्दी सांस लेती और बाद में सुस्त होकर बैठ जाती, जिससे मुर्गियों की बढ़वार और उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मुर्गियों में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर पक्षियों को पकड़कर उनकी कलगी और मुंह में पानी लगाकर ठंडा करें और पक्षियों को पानी में डुबोकर या उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके पंखे की हवा में छोड़ दें। स्प्रेयर से पानी का छिड़काव करके पक्षियों को बार बार गीला करते रहें। किन्हीं कारणों से गीला न कर सकने की स्थिति में मुर्गियों की कलगी को ही गीला करते रहें। यह कार्य दिन में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से करना चाहिए। गर्मी के कारण पोल्ट्री फार्म की छत और दीवारें गर्म हो जाती हैं। गर्म हवाओं से बचाव के लिए शेड के चारों तरफ जो पर्दे लगाए जाएं, वह इतनी ऊंचाई पर लगाए जाएं कि मुर्गियों को गर्म हवा और लू सीधे न लगने पाए। अगर किसान भाइयों के पास साधन है तो छत पर स्प्रिंकलर लगाकर छत को ठंडा करना चाहिए। जिनके पास कूलर और पंखे की व्यवस्था है, वो शेड के अंदर कूलर और पंखे अवश्य लगाएं। गर्मियों के दिनों में मुर्गियों के सामने हमेशा ठंडा पानी रखें और पानी में इलेक्ट्राल या शक्कर और नमक का घोल बनाकर पिलाएं। बिना पानी के मुर्गियों को 5 मिनट भी न रखें। इस समय मुर्गियों को साधारण और संतुलित आहार देना। गर्मियों के मौसम में दाना देने का सही समय देर रात और जल्दी सुबह अच्छा रहता है, क्योंकि दाना खाकर पचाने की प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है और देर रात और जल्दी सुबह खाना खिलाते समय तापमान कुछ कम रहता है। इस समय मुर्गियों को विटामिन सी, जो श्वास की प्रक्रिया को शक्ति प्रदान करता है, अवश्य खिलाएं और बीच बीच में टेरामासन एग फार्मूला देते रहें। गर्मी के मौसम में मुर्गियां तनाव में रहती हैं। तनाव भी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। शेड में कहीं भी कमजोर मुर्गी दिखाई दें, उन्हें तुरंत निकालकर अलग कर दें, क्योंकि मुर्गियों में अधिकतर छूतदार बीमारियां फैलती हैं, जिससे दूसरी मुर्गियां भी प्रभावित होती। मुर्गियों का धूल और तनाव से बचाव करना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में तनाव भी बहुत सी बीमारियों को फैलाने में सहायक होता। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की अगर सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना, गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखभाल, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 और 18 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
3: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: पानी रे पानी,
5: पानी रे पानी,
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।
6: ए भाई,
0: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें, किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
6: ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं।
7: आकाशवाणी संप्रतिवार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः, अमेरिका देशीयः विदेश मंत्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारत अमेरिका रणनीतिक सहभागितां भूयः अपि दृढ़ायितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ। ताभ्याम उक्तम यत एषा सहभागिता व्यापारोर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षादि क्षेत्रेषु विशेषतः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः रणनैतिक सहभागित्व संबंधः वर्तते, यः खलु गहन सहयोगाधृतः वर्तते। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्णविश्वे प्रभावं जनयन्ति, अपि च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमानचर्चा कठिनवैश्विकपरिस्थितिषु अभवत्, परञ्च मुक्तमनसा सार्थका चर्चा अभवत् इति तस्य विश्वासः। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धेः निर्णायकरूपेण निर्धारणम् अचिरमेव भवेत् इति आवश्यकम्। तेन ऊर्जा व्यापारे जातः विस्तारः अभिनन्दितः, अपि च उक्तं यत् विविधेभ्यः स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जासुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
8: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
7: अमेरिका विदेश मंत्री उक्तवान यत् उभौ देशौ आतंकवाद कारणात् कष्टम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुख विषयेषु रणनीतिक रूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् अमेरिका देशीयः विदेशमन्त्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे सम्प्रति भारते अस्ति। सः अस्य मासस्य 26 दिनांके अर्थात् श्वः क्वाड विदेशमन्त्रिणां सम्मेलने सहभागं करिष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने सुमहद् विजयम् अवाप्नोत्। श्री पांडा 21,900,000 भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दलस्य शंभुनाथ कुर्मिणम् पराजितवान्। तत्र कांग्रेस दलस्य अब्दुर रजाक मोल्लाह तृतीय स्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खान चतुर्थस्थाने अवर्ततां। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदान काले बृहत् स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचन आयोगः फाल्टा नगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे 21 दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रपति भवने 26,000 प्रथमे नागरिकालंकरण समारोहे 660 पद्म पुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, अन्ये च सम्मान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तर पश्चिमीय दिग्विभागेषु अतिताप कारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु प्रायः समाना एव स्थितिः आगामिभ्यः 6 प्रवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 30 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो अब से कुछ ही देर में यानी 7:30 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर होगा सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुन सकेंगे हेमंत कुमार के द्वारा कुछ गीत और भजन। सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे सुबह 9:00। 9:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे मशकूर अली खां से राग ललित। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे सुबह 10:00, यह हमारे भोपाल केंद्र के द्वारा आप सुन पाएंगे। 10:05 पर होगा व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम, साथ ही आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन पाएंगे दोपहर 12:00। इसके अतिरिक्त दोपहर 2:00 और 2:30 पर। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर होगा सुगम संगीत। यह दोनों ही कार्यक्रम आज हमारे भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे, जिन्हें आप मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा सुन सकेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए अब जानकारी ले लेते हैं हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, आप जानकारी हमारी दिल्ली सेवा के कार्यक्रमों के बारे में तो शाम 5:02 पर आप सुन सकेंगे। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमाई उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह 2025 का सीधा प्रसारण, 2026 का सीधा प्रसारण। साथ ही आपको बता दें, फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर, रात्रि 10:00

एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। 7:20 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे चर्चा के विषय होंगे पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करें, पीएम श्री एयरवेज एम्बुलेंस सेवा एवं राहगीर योजना, साथ ही गंगा दशहरे पर भी चर्चा करेंगे। चूँकि आज श्रोताओं सोमवार है तो आप सुन सकेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम, जो कि बुंदेली लोकगीतों पर फरमाइशी कार्यक्रम होता है। साथ ही श्रोताओं 9:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे राग रजनी। श्रोताओं ये थी समस्त जानकारी हमारी प्रथम सभा और द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रवण संपन्न हुआ।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र के द्वारा। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार होंगे थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। फाल्टा उपचुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा। गंगा दशहरा पर उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, मुख्यमंत्री चढ़ाएंगे 300 फीट की चुनरी। प्रदेश भर में जल संरक्षण का महाअभियान। और नौतपा के पहले ही दिन 44 जिलों में हीट वेव अलर्ट, 5 जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट, 28 मई तक नहीं मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दिए जाएंगे, जबकि बाकी पुरस्कार दूसरे दौर में दिए जाएंगे। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता का भाजपा पर

0: डॉक्टर मोहन यादव मां क्षिप्रा को 300 फीट की चुनरी अर्पित करेंगे। अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 1.91 लाख से ज्यादा जल संरक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं। इस पूरे अभियान के लिए सरकार ने 10,666 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 59% राशि खर्च भी हो चुकी है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 मई यानी आज कर दी है। बोर्ड का कहना है कि छात्रों को पर्याप्त समय देने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं पुनर्मूल्यांकन यानी रीचेकिंग के लिए आवेदन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अभिनेत्री त्रिशा शर्मा की मौत के 12 दिन बाद कल भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से आकाशवाणी संवाददाता मोहम्मद ताहिर।
1: भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में त्रिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले रविवार को दिल्ली एम्स की टीम ने त्रिशा की डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम किया था। भोपाल एम्स में करीब 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चली थी, उसके बाद अंतिम यात्रा एम्स से शमशान घाट तक निकाली गई थी। गौरतलब है कि 12 मई की रात भोपाल के कटरा हिल्स में त्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी त्रिशा शर्मा केस को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। त्रिशा के पति समर्थ को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया था, उसके बाद से ही वो 7 दिन की डिमांड पर है। आकाशवाणी भोपाल के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने और रोज पानी की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन के लिए 1500 करोड़ और पंचायतों को 55 करोड़ रुपये अलग से जारी किए हैं। इस बार अच्छी खबर में बात नीमच के किसानों की। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का जमीनी असर क्या है, बता रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता दिनेश प्रजापति।
3: नीमच जिले में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। खेतों में लगाए जा रहे सोलर पंप अब किसानों की सिंचाई व्यवस्था को आसान बना रहे हैं। जिले में सैकड़ों किसान इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
4: राजेंद्र गोयल कार्यपालन यंत्री उज्जैन ने बताया कि
5: भारत सरकार द्वारा इसमें 30% का अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा 60% का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषक ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को 90% के अनुदान में सोलर पंप की योजना का लाभ मिल रहा है। किसान को मात्र 10% की राशि ही इस योजना के तहत देना होता है।
4: सोलर ऊर्जा से लाभान्वित किसान गोविंद पाटीदार का कहना है,
6: किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, हर समय सोलर अपने को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाता है। फसलों को पानी मिल जाता है तो उस उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को शुरू होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के वैश्विक सम्मेलन में पहुंचे। यहां श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। दूसरी ओर डॉ. यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास बाघ के हमले में फूलबाई की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतका के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। जबलपुर पुणे और जबलपुर बांद्रा साप्ताहिक ट्रेनों को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के लंबे संघर्ष और प्रयासों का नतीजा है। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का कहना है कि इससे छात्रों, मरीजों और आम यात्रियों को सुविधा

मिलेगी। प्रदेश में 3 दिन चली ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना कल पूरी हुई। इस बार पूरे प्रदेश में 10,742 गिद्ध गिने गए, जो पिछले साल से करीब 1200 ज्यादा हैं। और अब बात मौसम की। आज से नौतपा शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। नौतपा से एक दिन पहले ही खजुराहो और नौगांव में पारा 45.8 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का यही हाल बने रहने का अनुमान है। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में कल 2 बड़े नतीजे सामने आए। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया, जिसमें कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से मात देकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल जबलपुर दौरे पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में बच्चों के साथ पौधे लगाए। धार जिले के ग्राम बिंजकुआं में नदी किनारे झाड़ियों में मादा तेंदुआ का शावक मिला है। वन विभाग ने सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर इसे इलाज के लिए भोपाल के वन विहार भेज दिया है। खंडवा के नीरज पटेल ने एशियन अंडर 23 ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप के 55 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज आगर मालवा में मोती सागर तालाब के गहरीकरण और सफाई कार्य में भाग लेंगे। बैतूल में गंगा दशमी पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्वालियर में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए आज व्यापक कार्यक्रम होंगे। इंदौर में बुजुर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज कलेक्ट्रेट में विशेष शिविर लगेगा। शिवपुरी में डाक विभाग आज और कल विशेष महा आधार अभियान चलाएगा। डिंडौरी जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में ही रैन बसेरा बनाया जाएगा। बालाघाट के मोती तालाब उद्यान में भीषण गर्मी के बीच कल 12 चमगादड़ मृत पाए गए। वन विभाग ने शव को जांच के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर ज्योत्सना सिंह के द्वारा काव्य पाठ।
1: मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ दो मुक्तकों से कर रही हूँ। मिटाकर हंसी गम की कहानी लिखने वाले बहुत हो गए हैं। मिटाकर हंसी गम की कहानी लिखने वाले बहुत हो गए हैं। आँखों की नमी चुराकर आंसू बहाने वाले बहुत हो गए हैं। कभी लगाओ कोई पौधा राहगीरों की छाया की खातिर, कभी लगाओ कोई पौधा राहगीरों की छाया की खातिर, पक्की सड़कों पर नकली फूल खिलाने वाले बहुत हो गए हैं। पक्की सड़कों पर नकली फूल खिलाने वाले बहुत हो गए हैं। अगला मुक्तक देखिए। जीवन की बगिया में चिन्हित चिंतन सुमन अनेक, जीवन की बगिया में चिन्हित चिंतन सुमन अनेक, विखरे सप्तवाण में लगते श्याम श्वेत सब एक, विखरे सप्तवाण में लगते श्याम श्वेत सब एक, कंकरीट के जंगल में हो बिखरे मन के चंचल भाव अनेक, चिर संचित संयम से मन के चंचल भाव हो बिखरे मन के चंचल भाव अनेक, चिर संचित संयम से मन के चंचल भाव रोक रहा मेरा विवेक, रोक रहा मेरा विवेक। अब इन्हीं मुक्तकों के बाद अगली रचना तुम्हारा बचपन प्रस्तुत है। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुमको मेरा साथ छोड़ने की जल्दी थी, लेकिन तुमको मेरा साथ छोड़ने की जल्दी थी। बड़े होने का आडंबर तुमने रचाया था, बड़े होने का आडंबर तुमने रचाया था, लेकिन तुम बड़े आज भी नहीं हो, लेकिन तुम बड़े आज भी नहीं हो। जब भी अपने टूटे फूटे खिलौनों को देखते हो तुम्हें अपना बचपन याद आता है। आज भी तुम अपने छोटे छोटे बच्चों में अपना बचपन तलाशते हो, कभी अपनी माँ की आँखों में झांक कर देखते हो, कभी अपने पिता की बातों का स्मरण करते हो, कभी अपनी माँ की आँखों में झांक कर देखते हो, कभी अपने पिता की बातों का स्मरण करते हो, कभी अपने सखाओं संग हंसी ठटोली से मुस्कुराते हो। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें ही साथ छोड़ने की जल्दी थी। बड़े होने का आडंबर तो तुमने रचाया था। चबूतरे के छोटे से नीम जवान हो गया है, उसकी शाखाएं तुम्हारी पहुंच से दूर हैं, लेकिन तुम अपना बचपन उन शाखाओं में आज भी तलाश रहे हो, लेकिन तुम अपना बचपन उन शाखाओं में आज भी तलाश रहे हो। तुम्हारी शरारतों का पिटारा गांव की बूढ़ी काकी की जुबान में आज भी कैद है। जब भी उनके पास जाते हो एक सांस में तुम्हारे बचपन की ढेरों किस्से कहानियाँ सुना देती हैं। तुम्हारी शरारतों का पिटारा गांव की बूढ़ी काकी की जुबान में आज भी कैद है। जब भी उनके पास जाते हो एक सांस में तुम्हारे बचपन की ढेरों किस्से कहानियाँ सुना देती हैं। फिर याद आता है तुम्हें अपना बचपन, फिर याद आता है तुम्हें अपना बचपन, जिसे आगे बढ़ने की चाह के कारण पीछे ढकेल दिया था। फिर याद आता है तुम्हें अपना बचपन, जिसे आगे बढ़ने की चाह के कारण पीछे ढकेल दिया था। सांसारिक सुख की लालसा के कारण विसरा दिया था, सांसारिक सुख की लालसा के कारण विसरा दिया था, लेकिन प्रवाहित है आज भी तुम्हारे रक्त में, लेकिन प्रवाहित है आज भी तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी स्मृतियों में, और बस गया उम्र का वो हिस्सा सारी उम्र के लिए तुम्हारे अंदर कहीं बहुत गहरे। मैं अपनी अगली रचना जिंदगी आपके लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये जिंदगी हमारी अपनी है, ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसके बदलते किरदार धूप छाँव की तरह है। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसके बदलते किरदार धूप छाँव की तरह है। सुख दुख नफरत प्रेम अनेक भावपूर्ण संवेदनाएं भी हमारी अपनी हैं। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसके बदलते किरदार धूप छाँव की तरह है। सुख दुख नफरत प्रेम अनेक भावपूर्ण संवेदनाएं भी हमारी अपनी हैं। बजती है कभी ये सांस की तरह, बजती है कभी ये सांस की तरह, कवि खो देती है शब्द टूटे वाद्य की तरह, कवि खो देती है शब्द टूटे वाद्य की तरह। आज़ाद परिंदों की तरह भरती है ऊंची उड़ान, कवि आज़ाद परिंदों की तरह भरती है ऊंची उड़ान, कवि थकी हारी निराश्रित उजड़े नीड़ सी खो देती है पहचान। कवि इंद्रधनुषी सतरंगी आवासी चमकती है, कवि काली रात सी भयानक डराती है। हम समझते हैं जिंदगी को हमने पहचान लिया, हम समझते हैं जिंदगी को हमने पहचान लिया है, जिंदगी इसके रंगों को हमने जान लिया है। ये भूल है हमारी, ये भूल है हमारी, जिंदगी का हर शब्द नया है हर अध्याय नया है, जिंदगी का हर शब्द नया है हर अध्याय नया है। अब इसके साथ ही अगली रचना अंतहीन पथ आपके सम्मुख प्रस्तुत है। चिंतनी उनीदे द्रग स्वप्न घनेरे भ्रमित दृष्टि उद्देश्यहीन दिशा, चिंतित मन बेचैन तन हृदय में व्याकुलता, विचारों में आकुलता लिए ढूंढती है पथ बंद आँखों से, अज्ञानता की लाठी से अविवेकी मन झूठी लालसाओं संग जीवन का यथार्थ जाने बिना उसको पहचाने बिना अंतहीन पथ पर ढूंढने चला है किसको, जीवन का यथार्थ जाने बिना उसको पहचाने बिना अंतहीन पथ पर ढूंढने चला है किसको। अब एक छोटी सी प्रस्तुति है हाइकू। बावरा मन हुआ बेचैन देख जहाँ की रीत, बावरा मन हुआ बेचैन देख जहाँ की रीत, छोड़ना चाहे रीत जहाँ की पर है मजबूर, छोड़ना चाहे रीत जहाँ की पर है मजबूर, छोड़ना चाहे रीत जहाँ की पर है मजबूर, समझे बिना ज्ञान की पर भूला ज्ञान डगर, समझे बातें ज्ञान की पर भूला ज्ञान डगर, मिलेगा कब सच्चा पथ ज्ञाता को राह दिखावे, मिलेगा कब सच्चा पथ ज्ञाता को जो राह दिखावे, मिलता सब आसानी से, मिलता सब आसानी से जहाँ में पर सच्चाई नहीं, मिलता सब आसानी से जहाँ में पर सच्चाई नहीं। बावरा मन हुआ बेचैन देख जहाँ की रीत। अगला है स्वप्न। स्वप्न संसार अनंत कल्पना से भरता रहे, स्वप्न संसार अनंत कल्पना से भरता रहे, टूटे घड़े के सदृश जितना भरो उतना ही खाली, टूटे घड़े के सदृश जितना भी भरो उतना ही खाली, बहुत रंगों से सजाया हमने, बहुत रंगों से सजाया हमने रंगों को जाने बिना, बहुत ऊंची उड़ाने भरी, बहुत ऊंची उड़ाने भरी शांत स्थिर होकर, ये स्वप्न का अद्भुत लोक, ये स्वप्न का अद्भुत लोक, यह सब कुछ मायावी, यह सब कुछ मायावी। हमारी अब अंतिम रचना है वक्त की परत। वक्त की परत को जब भी उंगलियों से खरोचना चाहा, वक्त की परत को जब भी अपनी उंगलियों से खरोचना चाहा, मिला दर्द टीस और कुछ पुराने जख्म, उन जख्मों का दर्द वक्त के साथ कुछ कम हो गया है, उन जख्मों का दर्द वक्त के साथ कुछ कम हो गया है, लेकिन टीस आज भी बाकी है, लेकिन टीस आज भी बाकी है, उन जख्मों को जब भी टटोलती हूँ मिलती हैं कुछ पुरानी यादें, और उन यादों में लिपटा हुआ दर्द जो वक्त की परत के साथ अंदर गहराइयों में धस गया है, उस दर्द की कल्पना मात्र से कंपित हो जाती है मेरी रूह और मैं। अतीत की स्मृतियाँ झकझोर देती हैं मेरा वर्तमान, अतीत की स्मृतियाँ झकझोर देती हैं मेरा वर्तमान, बस इसी भय से उन परतों को छूने से कतराती हूँ डरती हूँ, और हमारी उंगलियाँ भी सहमी सहमी उन परतों को केवल सहलाती हैं कुरेदती नहीं हैं।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ज्योत्सना सिंह के द्वारा काव्य पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं तो नीचे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। तो श्रोताओं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम बदलता जा रहा है, कुछ गर्मी तेज़ भी हो गई है, लेकिन हर वक्त हर समय सुबह की शुरुआत होती है सूरज की किरणों से, और सूरज की किरण हमें ये सिखाती है कि हमेशा इसी तरह जगमगाते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह दूसरों को प्रकाश दीजिए और अंधेरे को दूर कीजिए, क्योंकि ये सुबह का सूरज आपके लिए है, आगे बढ़ने के लिए है और आपकी

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरब राम के पास स्वागत है श्रोताओं, आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। सुबह का सूरज निकल आया है और सुबह का सूरज हमें जो रोशनी देता है वह सुबह की शुरुआत तो होती ही है, बल्कि हमें प्रेरणा भी देता है कि इसी तरह चमकते रहना है और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनना है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। जेब्रा क्रॉसिंग पर अपने वाहन की गति धीमी रखें। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें क्योंकि दाहिनी ओर से वाहन ओवरटेक करते हैं। कभी भी वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक ना करें। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स के निर्देशों का पालन करें। बेवजह हॉर्न ना बजाएं और बड़े वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: अल्पविराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम में बहुत ही प्यारे से गीत, तो आइए शुरुआत इस गाने इस गीत के साथ करते हैं एक बार फिर से शुरुआत। जिस तरह से रात की नींद और रात के सपने हमें बहुत सारे नई नई चीज़ें बुनने के लिए, नई नई चीज़ें सोचने के लिए आराम देती है, वैसे ही सूरज की तपन हमें सिखाती है कि हमेशा इसी तरह आगे बढ़ने के लिए खुद को तपाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, इसी तरह आगे बढ़ते जाना है और अपने सपनों को उमंग देना है, तरंग देना है, उड़ान देना है। हर दिन, हर सुबह, हर शुरुआत कुछ इस तरह से।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाऊ थी।
1: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सब ही सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: अल्बराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं फिल्म संगीत में। तो श्रोताओं सुबह की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के गीतों के साथ। तो आइए कार्यक्रम में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सूरज जब निकलता है तो कई सारे अंधेरे कई सारे दीपकों को बुझा देता है और अपनी ही रोशनी से सबको जगमगा देता है। वैसे ही आप भी ऐसे ही अपने अंदर की तपन को बाहर निकालें, अपने अंदर की ख्वाहिशों को बाहर निकालें और बिल्कुल इस सुबह की शुरुआत कुछ नए तरीके से कुछ नई उमंगों के साथ करें। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसे कि जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। कई सारे कवियों ने सूरज की उपमा सुंदर मुख से, किरणों से, चमक से की है। बिल्कुल इस गीत की तरह आइए हम भी कुछ नया सुनते हैं, कुछ नए नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: ए भाई।
1: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: ए भाई दर देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी।
2: अर प्रोग्राम के बाद एक बार फिर से स्वागत है फिल्म संगीत में। तो आइए कार्यक्रम में दीजिए, अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

बिल्कुल श्रोताओं, जैसे उपमा का कोई रूप नहीं होता, मतलब सूरज से नायकों की, नायिका की और कई सारी चीज़ों की उपमाएं की गई हैं, इसी तरह से केवल इसका एक ही मतलब है कि सूरज की तरह बनना है, हर सुबह जगना है, कुछ नई रोशनी के साथ, कुछ नई उमंगों के साथ इसी तरह आगे बढ़ना है, दूसरों को प्रेरणा देना है और एक प्रेरणा स्रोत बनना है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इन गीतों के साथ ही इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CET स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजाति सांस्कृतिक समागम में कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
5: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
5: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, समूह असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा। फालता में भाजपा की 1 लाख वोटों से विजय। दैनिक जागरण

0: कर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद दो दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
4: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
2: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune to 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritic Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। तो सुगम संगीत के इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र द्वारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार के द्वारा गाए हुए कुछ गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसे आप सुन पा रहे हैं हमारे ग्वालियर के आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र द्वारा, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार के द्वारा गाए हुए गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में इनके द्वारा गाया हुआ कार्यक्रम का ये अंतिम।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दिए जाएंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा दिखाती है। गंगा दशहरा के मौके पर आज प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान को जल आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। आज प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियां और नहरों की सफाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उज्जैन में 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव माँ शिप्रा को 300 फीट की चुनरी अर्पित करेंगे। नौतपा शुरू होने के पहले ही दिन आज मौसम विभाग ने 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। कल खजुराहो और नौगांव में पारा 45.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं है। और IPL के आखिरी लीग मैच के पहले मुकाबले में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से मात देकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे है। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
2: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम करते हैं आपका इस कार्यक्रम में इंतज़ार, क्योंकि हमें आपसे करनी होती हैं ढेर सारी बातें और जानकारी देनी होती है कई सारी बातों की। तो बिल्कुल ऐसे ही कार्यक्रम में, जैसा कि कार्यक्रम का ध्येय है सूचना और समाचारों पर आधारित है, तो बिल्कुल पहले हम बात करेंगे तापमान की। गर्मी का मौसम आ गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि तापमान तो बढ़ना ही है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, लेकिन आज है शुरुआत तापमान में नौ तपे के पहले दिन की। तो आपको पता ही है कि नौ तपों में ये नौ आने वाले आठ दिन भी इसी तरह से गर्म होने वाले हैं और साथ ही इस नौ तपे में जितनी आपको समस्या बाहर जाने में होगी वैसा ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अब तक जो डिग्री जो टेम्परेचर 41, 42, 43 हो रहा था वह अब सीधे सीधे बढ़कर 44 हो गया, यानी कि अधिकतम टेम्परेचर आज का है 44.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो है 29। यानी कि गर्मी अब बढ़ती जा रही है तो ऑफकोर्स आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो बनता ही है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि कभी भी आप अपने स्वास्थ्य में बिल्कुल लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी ऐसे गर्मी में, धूप में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे में हम आपको देना चाहेंगे कुछ छोटी सी जानकारियाँ जो कि हो सकती हैं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी। अगर आपको बाहर जाना ही है तो ऐसे में हमेशा अपने सिर को, हाथ को, पैर को, यानी कि एक सूती कपड़े से, ये एक सूती दुपट्टा हो सकता है, सूती टॉवल हो सकती है, उसे हमेशा बांध कर जाएं। डायरेक्ट संपर्क में, यानी कि लू के संपर्क में आने से बचें। साथ ही जहाँ तक संभव हो सके कॉटन के ऐसे कपड़े पहने जो कि आपके पसीने को सोख सकें और बाद में आपको इन कपड़ों को पहनकर परेशानी का सामना ना करना पड़े, यानी कि रैसेस ना हो कहीं पर भी, अनावश्यक रूप से आपको चिड़न ना हो, इस तरह से सूती और हल्के कपड़े पहने। हल्के रंगों के कपड़ों का ही प्रयोग करें क्योंकि इससे सनलाइट जो होती है वह ऑब्जर्व नहीं होती, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो जाता है और आप आराम से जो है तेज़ गर्मी में बच सकते हैं। शरीर को पूरा ढक कर रखें, हमेशा तरल पदार्थों का प्रयोग करते रहें, जैसे कि नींबू पानी है और आम पन्ना है, सत्तू का रस है, इस तरह की चीज़ों को हमेशा पीते रहें, क्योंकि समय समय पर आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अपने पास ORS ये सब रखें, जैसे कभी कोई परेशानी होने पर आप उसे ले सकें। मौसमी फल भी कई सारे गर्मियों में ऐसे मिलते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, गन्ने का रस है, ये सब चीज़ें आप बीच बीच में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी से लगातार पसीना

चलता रहता है, तो ऐसे में हमें इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सादा पानी, जब भी आप घर से निकलें सादा पानी की बोतल अपने पास ज़रूर रखें। ज़्यादा गर्मी में बाहर अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल भी ना निकलें। और ज़्यादा टेम्परेचर होने पर यानी कि दोपहर के टाइम पर यानी कि 10 बजे के बाद जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ऐसे में घर के बच्चे और बुज़ुर्गों को संभवतः बाहर ना निकलने दें, उन्हें हवादार या कूलर या पंखे के सामने कमरे में ही रखें। सीधी धूप के संपर्क से न केवल आपको बचना है, अपने परिवारजनों को बचाना है, बल्कि यदि संभव हो तो अपने घर की छत पर पानी के कुछ सकोरे या फिर कुछ दाने छांव वाले एरिया में डालें। बाहर घूम रहे जानवरों के लिए भी यदि हो सके तो पानी की व्यवस्था कर दें। यदि आपको इन सारे उपायों के बाद भी कहीं जाना पड़ा और अचानक से लू भी लग गई, तो ऐसे में भी आपको हम कुछ उपाय बताना चाहेंगे। दोस्तों, यदि आपको लू लग गई है तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि आपको अपने तापमान को चेक करना है। यदि आपकी का शरीर जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, आपकी आँख भी लाल हो रही है, तो ऐसे में आप ठंडे पानी का प्रयोग करें, अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएं, शरीर को भी एक नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से धोकर हवादार जगह पर यानी कि पंखे या कूलर के सामने बैठ सकते हैं। और यदि फिर भी आपको थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो ऐसे में कुछ समय तक आप लेटने के बाद प्याज के रस को हाथ और पैरों में मल सकते हैं। यदि आपको फिर भी जलन या चक्कर आ रहे हैं या उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो ऐसे में आप ठंडे पानी का और तरल पदार्थों का, जैसे कि मैंने बताया कि नींबू का रस, सत्तू का पेय या फिर आम पन्हा जैसी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर होने पर या फिर चक्कर या वॉमिटिंग होने पर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और ऐसे ही कार्यक्रम में हमें मिलें और बहुत सारी हम आपको जानकारियां दें, और जानकारी देने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करवाएं। तो आइए इस कार्यक्रम में पहले इस गीत के साथ लेते हैं थोड़ा सा एक प्यारा सा एहसास, उसके बाद लौटते हैं कार्यक्रम में एक बार फिर से।

बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से अंबर से कितनी भी गर्मी हो, यानी कि कितना भी सूरज का तापमान ऊंचा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन माँ के आंचल की जो ठंडा को प्यार होता है ना, वो बिल्कुल इस गाने के प्यारे से बोलों के साथ एहसास ही कुछ अलग होता है दोस्तों। तो आइए कार्यक्रम में बिल्कुल इसी तरह का एहसास कुछ आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हम आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, इतना आपको सारी जानकारियां दे रहे हैं कि स्वास्थ्य को ठीक रखें गर्मी में और तापमान में, बिल्कुल अपना तापमान जो है शरीर का नियंत्रित रखें, वैसे ही कुछ और भी चीज़ों पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। शहर में रविवार को यानी कि कल के दिन से स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की शुरुआत हो गई है। हालांकि रविवार को भीषण गर्मी के कारण केवल 3 ही वार्डों में सर्वे हो पाया है, और सुबह की से यह टीम निकलती है और दोपहर 1 से 1.5 बजे तक, उसके बाद शाम को फिर यह तापमान कम होने पर टीम ने सर्वे शुरू किया और कई जगह पर कई सारी जानकारियां भी ली हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर गाड़ी टाइम से आती है या नहीं, आपने गीले और सूखे कचरे के लिए क्या प्रबंधन किया हुआ है, आसपास की नालियों में सफाई समय समय से होती है या नहीं, या फिर कोई प्रकार की समस्या तो नहीं आती है, बार बार आप कचरे का प्रबंधन गलत जगह तो नहीं कर रहे हैं, आसपास कॉलोनी में कहां कहां पर इस तरह के कूड़े के ढेर या कचरे को इकट्ठा किया जा रहा है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है अगर नगर पालिका की तरफ से, तो भी आप इन्हें बता सकते हैं। यह सर्वेक्षण रविवार को वार्ड क्रमांक 33, 44 और 51 में हुआ। यहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ के जो फोटोग्राफ्स खींचे गए थे, वो सारे सभी जो है लोकेशन दिल्ली पहुँचाए गए, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि अब से जहाँ भी कचरा इकट्ठा है वहाँ पर नगरपालिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें भी निर्देश दिए गए। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण की जिम्मेदारी केवल सर्वेक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी यह निजी जिम्मेदारी है कि जब भी हम इस तरह का कोई भी गलत या कचरे का सही प्रबंधन ना देखें तो हम उस पर रोक टोक कर सकें। यानी कि अपने आसपास तो कम से कम ऐसा रखें ही, हम भी स्वयं कहीं पर कचरा ना फैलाएं और स्वच्छ भारत अभियान में इस तरह से जुड़ें कि दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें। लेकिन इस स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में आपसे यानी घर जाकर कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे कि आपको अनावश्यक किन्हीं सवालों को ये जानकारी दूसरों को ना देनी पड़े और आप भी सुरक्षित रहें। क्योंकि इस समय कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि इस बहाने से कोई दूसरी टीम आकर आपसे कुछ गलत सवाल या कोई पर्सनल जानकारियाँ आपकी ले ले। इसके लिए आपको कुछ ऐसे 8 से 9 सवाल हैं जिनके बारे में आपको बता देते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो टीम है वो क्या क्या पूछ रही है। तो ऐसे में बता दें कि भाई पूछती है, क्या आपके घर में रोज़ कचरा संग्रहण होता है? आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग कैसे रखते हैं? क्या आपके क्षेत्र में नाले और ड्रेनेज साफ किए जाते हैं? क्या आप अपने शहर में 3R के पुनः उपयोग और रिसाइकल केंद्र के बारे में जागरूक हैं या जानते हैं? क्या आपने हाल ही में अपने शहर में

0: कर सकते हैं? क्या अपने आसपास की साफ सफाई को कितना रेट करेंगे आप? आप अपने शहर की समग्र स्वच्छता को कितना रेट करेंगे? आप इसके जो भी ऑनेस्टली यानी कि जो भी ईमानदारी से जवाब हो सकते हैं आपके द्वारा वह ज़रूर दें। इसके अतिरिक्त आपसे वह आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं मांगते हैं, ना ही किसी प्रकार के ऐसे सवाल करते हैं जिससे कि आपको उन्हें आंसर करना उचित ना लगे। तो इन सभी सवालों का आंसर आप सही और ईमानदारी से दें। अगर आपको कोई परेशानी है तो भी उन्हें बताएं, और या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें जो आपके जानकारी में नहीं है तो भी आप उन स्वच्छ सर्वेक्षण अधिकारियों से पूछ सकते हैं। तो श्रोताओं, ये जानकारी भी आपके लिए है, लेकिन एक और जानकारी आपके लिए है। इस छोटे से विराम के साथ फिर से हाजिर होते हैं इस जानकारी के बाद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल आप ऐसे ही सतर्क रहिए, किसी प्रकार की किसी भी प्रलोभन में ना फंसिए, और हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारियाँ हमेशा आपके उपयोग की होती हैं, और ज़रूरत होती है आपको कई सारी जानकारियाँ हमें भी आप तक पहुँचाने की, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत करने का जो मौका मिलता है। तो आइए ये अगली खबर आपको जोड़ते हैं एक नई जानकारी को, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे, और जिस तरह से हम आपकी फ़िक्र कर रहे हैं उस फिक्र में एक फिक्र और जुड़ जाती है कुछ इस तरह से। रेलवे सफ़र को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए अब रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो घूमने तो जा ही रहे हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे ज़रूर, और लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। यानी कि स्टेशन पर जब भी आप जाते हैं तो कई बार ट्रेन को छूटते हुए अपने सामने देखते हैं, कभी 5 मिनट लेट हो जाते हैं, तो पहले निकलें। लेकिन उसके अलावा भी ट्रेन में सफ़र करते समय कई बार आपको पानी चाहिए या कुछ सामान चाहिए, तो कई बार आप नीचे उतर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कब ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में इस परेशानी को कम करने के लिए स्टेशन पर अब ट्रेन रवाना होने से ठीक पहले एक विशेष डिपार्चर अलर्ट सिस्टम यानी कि अनाउंसमेंट सिस्टम बजाया जाएगा। झांसी स्टेशन की तर्ज पर अब ग्वालियर में भी इस आधुनिक सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। इस सिस्टम की शुरू से होने से जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन तैयार है उसका अनाउंसमेंट गूंजेगा, इससे यात्री तुरंत जो है सतर्क हो जाएंगे। अभी तक अक्सर देखा गया है कि लंबी दूरी की ट्रेन के ठहराव के दौरान यात्री पानी लेने या खाने पीने का सामान लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो कई बार ट्रेन अचानक चल देती है, तो ऐसे में क्या होता है, लोग पीछे भागने लगते हैं, चेन खींचने लगते हैं, और कई सारों की ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं इस हड़बड़ी में। तो इस सब से बचने के लिए यह उपाय किया गया है। साथ ही यदि आप लंबी दूरी यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और सुविधाजनक बात आपको इस खबर के साथ हम जोड़ना चाहेंगे, आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आप अपनी दूसरी ट्रेन आने में समय है, तो आप इन दोनों ट्रेन के समय के बीच में कुछ आराम या सुविधाजनक जगह पर जाना चाहेंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशन पर ही स्थित रिटायरिंग रूम में आप AC और नॉन AC रूम बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर रिटायरिंग रूम पर क्लिक करना होगा और टिकट का PNR नंबर डालकर आप AC और नॉन AC रूम खाली होने की स्थिति में बुक कर सकते हैं। तो ये है आपकी सुविधा के लिए जो भी हो सकता है जानकारियाँ दी जा सकती हैं आपको, वो हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने यात्रा को भी सुखद बनाएं, और हमारे साथ यूं ही इस कार्यक्रम की यात्रा पर चलते रहें। एक मनोरंजक गीत के साथ फिर से लौटते हैं इस कार्यक्रम में।

बिल्कुल दोस्तों, आपको आने वाले समय की फिक्र तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल इस गीत के बोलों की तरह हम भी आपसे कहते हैं कि हमेशा अलर्ट रहें, खुश रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल अलर्ट रहेंगे तो आपको अपने आने वाले भविष्य की तो चिंता के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और अगर सच में आप चाहते हैं कि आगे आने वाला समय अच्छा हो, खुशहाल हो, उसके लिए अलर्ट रहना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हम जोड़ते हैं एक नई खबर को, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप 10th और 12th के जो बच्चे किसी प्रकार से रह गए थे या उनके पेपर्स नहीं हो पाए थे या किसी सब्जेक्ट में रह गए थे, उनकी परीक्षाएं भी लगातार चल रही हैं। तो ऐसे में एमबी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 26 मई को जो समाप्त होने जा रही है, उसका रिजल्ट का इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना होगा आपको, क्योंकि सरकार भी हमारी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और वो चाहती है कि बच्चों को जितनी जल्दी हो सके उनका रिजल्ट दिया जा सके, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। उनके मुताबिक जून के प्रथम सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और जानकारी के अनुसार द्वितीय परीक्षा का अंतिम पेपर 26 मई को होगा। इसके बाद मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो रही है, क्योंकि जो अब तक पेपर हो चुके हैं उनकी पेपर कॉपी भी चेक हो चुकी है, इसके अलावा उनके रिजल्ट भी तैयार हो चुके हैं। बस केवल अंतिम पेपर का इंतज़ार है और जैसे ही वो पेपर खत्म होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया थोड़ी तेज़ करके उसे जितना जल्दी हो सकेगा संभवतः जून के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट को आपको दे दिया जाएगा। साथ ही हम बता दें कि जो प्रथम चरण की परीक्षा में मार्कशीट स्कूल में पहुंचा दी गई है और जल्द ही आपके शिक्षा विभाग उन्हें वितरण करने की पूरी तैयारी में है। यानी कि जब हमारा शिक्षा विभाग हमें पीछे रहने की के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा है, यानी कि वो खुद भी अलर्ट है, तो आपको भी अलर्ट मोड में आगे की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल, हम तो कहते ही हैं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, कहीं पर रुके नहीं, किसी भी परेशानी को आपको मतलब ना देखना पड़े, उसके लिए हर संभव प्रयास आपके लिए शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में ना केवल 10th 12th बल्कि उच्च शिक्षा वाले छात्रों के लिए भी कुछ सुविधाएं हमारे द्वारा यानी मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जा रही हैं, उनके बारे में भी साथ साथ हम बताना चाहेंगे आपको। यदि आपने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है और परिवार की आर्थिक तंगहाली के कारण कॉलेज में दाखिला लेने में परेशानी हो रही है, तो ऐसे में आज आप जो है मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की मदद ले सकते हैं। श्रम विभाग की ओर से संचालित इस योजना में राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र में कामगारों या श्रमिकों मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल कराने में मदद करती है। इसमें कॉलेज में डिग्री कोर्स या अन्य किसी अन्य प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए अक्सर के लिए सरकार द्वारा कौशल मनी छोड़कर प्रवेश शुल्क की राशि दी जाती है, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह योजना क्यों संचालित की गई है और किस किस के लिए है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि यह गरीब बच्चों, कामगारों, मजदूर जैसे जिनके पास अधिक पैसा नहीं है और वो उनके बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए यह योजना की गई है। यदि परिवार संबल योजना में पंजीकृत है तो और भी अच्छा है। बच्चा कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहा है तो इसकी योजना का पूरी जानकारी लेकर इसका फ़ायदा ले सकता है। अब आपको इस योजना का लाभ कैसे मिले, उसके लिए हम एक जानकारी और आपको इसके साथ जोड़ते हैं। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। विद्यार्थी खुद https medhavikalyanam.mp.gov.in पर या फिर संबल स्कॉलरशिप default.aspx पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कई कॉलेजों में इस योजना के तहत हेल्प डेस्क भी बनाए जाते हैं, जहां आवेदन प्रक्रिया की सहायता मिल जाती है। आवेदन के साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं, जिनकी आप डिजिटल कॉपी दे सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में भी आपको जानकारी अगर चाहिए तो हम बता देते हैं। संबल योजना में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, छात्र की 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, समग्र ID, कॉलेज में प्रवेश का प्रमाण पत्र, फीस संरचना की जानकारी और बैंक खाते का विवरण, जाति प्रमाण पत्र। बस इन दस्तावेज़ों के साथ आप उच्च शिक्षा में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह
यहाँ पर जाकर, यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शिक्षा में व्यवधान ना पड़े, आप आगे बढ़ें और इसी तरह हमेशा आगे बढ़ते रहें। और हम तो चाहते ही हैं कि हमारे श्रोता जो है कहीं ना कहीं इन जानकारियों का लाभ लें और आगे बढ़ें और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम से भी जुड़े रहें। लेकिन इस कार्यक्रम में अब आपसे हमें लेनी होगी इजाज़त, क्योंकि कार्यक्रम का समय ख़त्म हो चला है। लेकिन इस वादे के साथ कि कल भी आपके पास आएंगे ढेर सारी जानकारियां लेकर इसी गीत और संगीत के मनोरंजन के साथ। लेकिन अभी दीजिए आपकी रेडियो मित्र रश्मि राहुल को इजाज़त। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 और 28 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मशकूर अली खां के द्वारा राग ललित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना मशकूर अली खां के द्वारा राग ललित। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही देर में जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे। कृपया जिले की चिट्ठी के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: आवाज जिले की चिट्ठी आलेख नितिन गुप्ता वाचन स्वर दीपा सिंह देवास जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। शहरों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है जबकि गांव में तापमान 45 डिग्री के आसपास घूम रहा है। दोपहर में सड़कें सूनी और लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमिक जोन परियोजना लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे हरित उद्योग, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश आएगा। विधायक आशीष शर्मा की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में तय किया गया है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा। इसी बीच जनगणना 2027 की तैयारियां भी पूरे जोर पर हैं। जिले में 1 मई से घर घर जाकर डिजिटल तरीके से मकानों की गिनती की जा रही है। अब तक 3,59,000 से ज्यादा मकानों का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। गर्मी के बीच पानी बचाने की मुहिम भी तेज हो गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गाँव गाँव में कुएं, बावड़ियां और नदी नालों की सफाई हो रही है। वहीं शिप्रा नदी के घाटों पर भी साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देवास नगर निगम ने कचरे को भी कमाई का जरिया बना दिया है। शहर से रोज निकलने वाला 60 से 65 टन गीला कचरा अब शंकरगढ़ प्लांट में खाद में बदला जा रहा है जहां हर दिन 10 से 12 टन जैविक खाद तैयार हो रही है। दूसरी ओर जंगलों में भी रौनक बढ़ गई है। सतवास, कन्नौद, बागली और निमावर जैसे इलाकों में तेंदूपत्ता तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस साल करीब 1,00,000 फानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। खेती किसानी की बात करें तो कृषि विभाग का किसान रथ गांव-गांव घूमकर किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, उन्नत खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दे रहा है। मूंग और उड़द बेचने वाले किसानों के लिए भी जरूरी खबर है। 25 मई यानी आज से 15 जून तक सरकारी खरीद के लिए पंजीयन होगा। इस बार ओटीपी नहीं बल्कि आधार से फेस स्कैन कर पहचान की जाएगी। जनजाति इलाकों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के जरिए गांव में पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। देवास में कुपोषित बच्चों के लिए किलकारी अभियान 2.0 उम्मीद बनकर सामने आया है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अमलतास अस्पताल में भर्ती कर मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और अब तक 72 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12,457 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। जिला जेल देवास में लगे विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्रा ने बंदियों से सीधे चर्चा कर उनके मामलों की जानकारी ली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर में विशाल प्लेसमेंट ड्राइव होगी जहाँ 450 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित युवाओं को करीब 17,000 रुपये वेतन मिलेगा। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सख्त हो गया है। निमावर, फतेहगढ़ और शिप्रा में बिना लाइफ जैकेट नाव चलाने, सूर्यास्त के बाद नौकायन और नशे में बोटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के इच्छुक छात्र 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिले के बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया का आरसीटी केंद्र 30 दिन का मुफ्त मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करा रहा है जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग सामग्री सब मुफ्त मिलेगी। कोर्स के बाद खुद का काम शुरू करने के लिए सरकारी लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी। इच्छुक युवक 9893193973 पर संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। और आखिर में एक प्रेरणादायक खबर, ग्वालियर के बादल राजपूत ने सरकारी छात्रवृत्ति योजना से 33 लाख रुपए की मेडिकल पढ़ाई पूरी की और अब दतिया में सरकारी डॉक्टर बनकर सेवा दे रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे होनहार छात्रों की पूरी एमबीबीएस फीस उठाने का फैसला किया है। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में आई सुनते हैं सबसे पहले फिल्म दिलवाले से लिया हुआ ये गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। साथ ही आपको बता दें कि इस गीत को सुनने की फरमाइश की है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, ससांग साहू, सीमा साहू ने। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांश, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर, सुनील पाठक ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से विनोद, नेहा, मयंक, दीपक, चेतन, दीक्षा, कुशत और सभी मूरत परिवार। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश, गौरव, गरिमा, हर्ष आहूजा, इसी गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। शेरवानी स्कूल, गंज डंडवारा, उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद अनवर, लुबाना अंसारी, आलिया अंसारी, अंसारी परिवार ने। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किराना, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SV, पप्पी खुराना, इन सभी ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में सुनवाते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अनवर से। गीत में आवाज़ है रूप कुमार राठौर की, गीत को लिखा है सैयद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने। तो आइए, साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है नादेड़ से प्रकाश जैन ने, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पंकज जैन ने, दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशा राजा, आशीष चैतन्य, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आशी वर्मा, रमेश चंद्र मूषा भाईजान, राजकुमार बड़ौना, इन सभी ने। साथ ही इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश लिख भेजी है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवानी, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालवाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी काना, श्रीमती मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालवाड़ा राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई, इन सभी ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है जैन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञे संघई, प्रदेश संघई, इन पूरे संघई परिवार के द्वारा इस गीत को पसंद किया गया है। साथ ही हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख,

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वार्ता फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, और इस विराम के बाद हाजिर होते हैं एक बार फिर से ये कार्यक्रम लेकर।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अल्पविराम के बाद स्वागत है श्रोताओं आपका वार्ता फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म स्त्री 2 से लिया हुआ ये गीत। वरुण जैन, शिल्पा राव और साथियों की आवाज़ों में गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने। तो आइए साथ ही आपको बता दें कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश किसने की है। हमें फरमाइश की है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाने, आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से। इस गीत को सुनना चाहते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकाम खत्री, मोहम्मद अलमद खत्री, रमेश गौड़ और जामा मस्जिद रोड गोगांव से हाजी लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है बिटोड़ा रोड मंडी डडवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग, इन सभी ने। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाच ने इस गीत को पसंद किया है। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस माऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने, और इसी गीत को पसंद किया है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित सचिन, मास्टर समर राजन आर्यन, आरोही इशिका, अंजलि स्वेता, इन सभी वर्मा परिवार ने। तो आइए इनकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं इनके पसंद का ये गीत, और साथ ही बताना चाहेंगे कि इसी गीत को पसंद किया है गम्हारी जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल ने भी। तो इनकी पसंद को हम आप तक इस गीत के माध्यम से लेकर आते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हमारी श्रोताओं की अगली पसंद, जिसे हमने लिया है फिल्म कुर्बान से। गीत में आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल, सोनू निगम और उनके साथियों की। इस गीत को लिखा है निरंजना ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमानी ने। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत को फरमाइश की है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता राम सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने। मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। ग्राम पंचायत कालेगांव से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, सचिव सचिन, प्रथमेश प्रणाली सर्वदा और सानवी देशमुख ने। समस्त देशमुख परिवार की तरफ से इस गीत को पसंद किया गया है। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज और विट्ठल बजाज ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद अब्बासी, सोहेल हसन, रशीद, अमन, यशव, इन सभी ने। सिकंदराबाद राव से मुबीन अब्बासी और इसरत परवीन ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत और साथ ही बताते हैं कि एक और श्रोतागण है जिन्होंने इस गीत को फरमाइश की है। धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। तो आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़े ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जीजी हमें लोक माधुरी में सुनवाऊ थी।
1: हाँ खूब ही सही चीनो तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जीजी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सब ही सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जीजी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हमारी अगली पसंद, जिसे हमने लिया है फिल्म बचना ए हसीनों से। और इस गीत में आवाज़ें हैं लकी अली और श्रेया घोषाल की। गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत दिया है शेखर और विशाल ददलानी ने। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल ने।

पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, प्रथमेश कुमारी प्रणाली, सर्वदा और सानवी ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। पटियाला कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, सजांग साहू और सीमा साहू, इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। विनोद मुणात, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतना, दीक्षा, इन सभी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गरिमा वर्मा ने इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश मिली है। सनावत से शेखा मूसा मोहसिन, अशोक कुमार, राम कुमार बढ़ाना, इन सभी ने। साथ ही जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर फरमान, डॉक्टर सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, इन सभी ने। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश लिखी है। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकर ने इसी गीत के लिए अगली फरमाइश लिखते हैं। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से मुशरत जहानाज, तलअत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफअत जहानाज और नुहजत जहानाज ने इसी गीत के लिए अगली फरमाइश है। हरदोई रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश से बेगम इमराना नाज, दानिश शेख, अमन अफरीदी, इन सभी ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म बचना है हसीनों का ये गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक बार फिर से स्वागत है आपका व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसका आप आनंद ले पा रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र द्वारा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये अगला गीत फिल्म राज 2 से। इस गीत को आवाज़ दी है कृष्णा ने, संगीत दिया है राजू सिंह ने और इस गीत को लिखा है कुमार ने। और साथ ही बता दें कि इस गीत को फरमाइश की है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगन, काशिम अली और नदीम अली, इन सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, परविंदर मीका, जयतेक बिरक, मीका बिरक, हरदेव, इन सभी ने। और साथ ही इसी गीत के लिए फरमाइश की है अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत कौर, गगनदीप कौर, रौनक दीप कौर ने। संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी, दीपक चांदनी यादव। ग्वालियर से सलामता खान और सोनाबाई ने। सौदागर संतर मुरार से गिरीश मिश्रा, गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा ने। तो इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म राज 2 का ये गीत

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, जिसे आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र द्वारा। तो आइए कार्यक्रम में लेते हैं अगली फरमाइश। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से लिए से इस गीत की फरमाइश हमें की है गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर से सुरिंदर साहू, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, सिका साहू, प्रेमिलेस और मैक्स ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रेमिलागंज अलोटा अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांशु और ऋषभ। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गराम साहू। तो आइए इनकी सभी की फरमाइश को हम पूरा करते हैं और इनकी फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमें लिख भेजा है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत मल्होत्रा, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, विट्ठल बजाज और साहिल बजाज ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, नितिन पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वर्ष बत्रा ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म पद्मावत से लिया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, इसी अंतिम गीत के साथ ही वार्ड से फरमाइश कर ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में आप मध्य प्रदेश केंद्र द्वारा सुनेंगे।

0: आज दोपहर धार की भूशाला पहुंचकर मां वाग देवी के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को भूशाला को मां सरस्वती यानी वाग देवी का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। गंगा दशहरा के मौके पर आज गंगा जल संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियां और नहरों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रूपये और डीजल 99.74 रूपये हो गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इस महीने के 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ाई है। संशोधित तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। जबलपुर पुणे और जबलपुर बांद्रा साप्ताहिक ट्रेनों को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे छात्रों, मरीजों और लोगों की यात्रा में आसानी होगी। प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए बोर्ड को स्कॉच अवार्ड दिया गया। और आईपीएल के पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। नमस्कार श्रोताओं, सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो सखी रक्षा तंवर का प्यार भरा नमस्कार। आज का कार्यक्रम फोन करे गीत सुने आरंभ करने से पहले एक जरूरी बात बताना चाहेंगे। फोन करे गीत सुने कार्यक्रम अब रिकॉर्ड किया जाता है 10:30 से 11 बजे तक। कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902। इसका एसटीडी कोड है 0755। तो चलिए आज के पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, फोन करे गीत सुने।
3: जी मैम नमस्ते, मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बीरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
2: संतोष कुमार राव जी, कैसे हैं आप?
3: मैडम बहुत अच्छे हैं, आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही साफ स्पष्ट आवाज है आपकी। नमस्कार भोपाल गीत सागर जैसे कार्यक्रम हमारे मन को छू जाते हैं।
2: अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बता दीजिए हमें।
3: खानदान मूवी का गाना।
2: खानदान फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: खानदान मूवी के तो सारे गाने अच्छे से अच्छे हैं मैम। पुराने गानों की बातें की जाए तो बहुत ही प्यारी प्यारी गीतों की फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से चलाई जाती है। खानदान मूवी का आप गाना सुनवा दीजिएगा, तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा।
2: तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, बड़ा सुंदर गीत आपने फरमाइश की है। और मैं जब तक आपका गाना ढूंढ रही हूँ, आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं?
3: मैडम तो आकाशवाणी स्टूडियो यूं कहें कि आकाशवाणी शहडोल में वार्ताकार हूं और मुझे वार्ता लिखने का बहुत ज्यादा शौक है मैम। तमाम कार्यक्रमों को सुनना भी अच्छा लगता है और साथ में वार्ता करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में कृषक भी हूं मैडम जी।
2: अभी क्या खेती कर रहे हैं आप?
3: मैडम अभी तो खेतों की तैयारी हो रही है क्योंकि इस समय नौतपा चलने वाला है और नौतपा में हम जो खास करके अपने खेतों की सफाई करते हैं, आसपास की जो धूल मिट्टी जम जाती है तो उसमें एक बार जुताई करके रहने देते हैं ताकि जो तपिश है गर्मी का वो खास करके खेतों में पड़े और जो हमारे खरपतवार हैं उन्हें साफ सफाई कर लें ताकि जो पहली बारिश हो जिसमें कि हम अपनी फसलें ले सकें। जैसे कि पहली बारिश में मकई की बुवाई की जाती है साथ में धान की रुपाई, तो धान की तैयारियां चल रही है मैडम जी समय।
2: अच्छा जी, धान की तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। संतोष जी आपका गीत भी हमें मिल गया है, तो चलिए अब आपका गीत सुन लेते हैं कार्यक्रम में।
3: बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।
2: जी जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार, ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: राम नरेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम ठीक हैं और आशा करते हैं कि आकाशवाणी भोपाल के सभी उद्घोषक महोदय, उद्घोषिका महोदय और श्रोतागण भी ठीक होंगे। और इस समय जो गर्मी है वो काफी ज्यादा हो रही है, लगभग 40 डिग्री से ऊपर, कहीं कहीं 42, कहीं 45, कहीं 44 के आसपास पारा चल रहा है सभी जिलों में। और देखा जाए तो इससे तो सभी एहतियात बरत रहे हैं, सभी अपना बचाव कर रहे हैं, ठंडा पानी पीते हैं और कोशिश यही करते हैं कि तेज धूप में, गर्मी में, दोपहर में बाहर ना निकले, नहीं जाते हैं और जो भी जरूरी काम होते हैं वो सुबह के समय पूरे करने का प्रयास करते हैं और फिर शाम को 4 बजे के बाद में कोशिश करते हैं अपने घर के सारे काम पूरे करने की।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप वैसे, लेकिन 4 बजे भी नहीं, 6-6:30 बजे तक भी काफी धूप महसूस हो रही है।
1: आपने सही कहा, थोड़ा और दिन ढल जाए तो थोड़ा ठंडा वातावरण हो जाता है 5 बजे के बाद।
0: जी जी जी, तो राम नरेश जी मौसम की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप कार्यक्रम में?
1: जी जी जी

0: बिल्कुल सही कहा। आज के कार्यक्रम में आप सुनवा सकते हैं हमें, फिल्म का नाम है अफलातून।
1: अफलातून फिल्म से?
0: जी जी, अफलातून फिल्म का गीत है और ये खबर छपवा दो अखबार में, ये गाने की लाइन है। बड़ा अच्छा सुरीला गीत है और इसमें जो अभिनय किया था वो अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म थी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश जी आपकी फरमाइश का, और ये जो आपका गीत है हमें मिल गया है और अब आपको सुनवाई देते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपके रेडियो सेट्स पर कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी नमस्कार दीदी, नमस्कार
0: जी। आपका नाम जान सकती हूँ?
1: जी जी जी, मैं आपका भाई अपने प्यारे से गांव खैर मझियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ।
0: राम जी गर्ग बात कर रहे हैं?
1: जी जी जी
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, पर दरअसल इस समय ये गर्मी बहुत ही जबरदस्त पड़ रही हमारे रीवा में, बल्कि पूरे इंडिया में पड़ रही है। रीवा में तो बिल्कुल निकलना है मुश्किल है, 45-46 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है।
0: ये तो बहुत बहुत ज्यादा है
1: जी जी,
0: बड़ी मुश्किल आपको सामने आ रही होगी।
1: जी हम इन भर को कहे, यहाँ तक कि मनुष्य को तो आती ही, पशु पक्षी भी बेचारे बहुत इधर उधर हो रहे हैं गर्मी में। तो मैं चाहता हूँ कि उनको पानी पीने के लिए और कुछ खाने के लिए व्यवस्था हमारे भाई बहन लोग करें, और उसके साथ साथ अपना भी बचाव किए रहें इस गर्मी से, जहाँ तक हो सके तो 12 से 4 के बीच में ना निकलें।
0: जी बहुत बहुत सुंदर विचार हैं आपके, और मुझे लगता है कि जरूर जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो आपके सुझावों को सुनकर उन्हें अमल में भी लाएंगे।
1: जी जी।
0: तो अभी कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, और कार्यक्रम में आपने फोन किया है, आज फोन करे गीत सुने कार्यक्रम हम सुनवा रहे हैं आपको, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज कार्यक्रम में?
1: ये जय संतोषी माता का गाना मैं सुनना चाह रहा हूँ दीदी। करता हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो माँ।
0: और अब हम आपको आपका गीत सुनवाए देते हैं।
1: जी जी, बहुत बहुत आपको आभार हमारे,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: के लिए दीदी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: अनोखे सिंह,
0: अनोखे सिंह जी बात कर रहे हैं जी। अनोखे सिंह जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, नॉर्मल है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बाग जिला धार।
0: धार से बात कर रहे हैं आप जी। कैसा मौसम है वहाँ पर?
1: मौसम तो अच्छे ही है, जितनी गर्मी पड़ रही है उतने फल पौधे फ्रूट सभी आ रहे हैं अच्छे से।
0: अरे वाह, ये एक अलग नजरिया आपने बताया। ज्यादातर लोग गर्मी से बड़े परेशान हैं, पर ये एक नया नजरिया आपने बताया कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उतने अच्छे फल और सब्जियां आ रहे हैं।
1: हाँ, फल सब्जी फ्रूट पत्ते हरियाली बहुत।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: गाना सुनाऊंगे तो हमको तो सर जी क्रांति का ही सुनना है।
0: क्रांति फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: क्रांति का दुर्गा है मेरी माँ।
0: बिल्कुल, आपको आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करते हैं आप?
1: जी हम व्यवसाय करते हैं।
0: अच्छा, किस चीज का व्यवसाय करते हैं?
1: ये अपना गल्ला की खरीदी है और किराना स्टोर की दुकान है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। और कैसा मौसम चल रहा है अभी? इतनी गर्मी है वहाँ पर, किस तरह से है मौसम?
1: मौसम तो रक्षा जी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। और साथ अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बुंदेली लोकगीत मैं थोड़ा सा बजा दूँ, का नाम सुना दूँ आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाए।
1: हाय बाले माँ, हाय बाले माँ, मर जा रहे हम गर्मी में, हाय बाले माँ। बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, खजुराहो का टेम्परेचर बहुत 47 डिग्री के लगभग चल रहा है। और हमारा लगा हुआ बांधा है, हमारे यूपी का जो है, बिल्कुल हाँ। हमारे छतरपुर जिले से लगा हुआ है बांधा। तो आपने भी सुना होगा न्यूज में कि बांदा पूरे भारत में सबसे गर्म।
0: बांदा का तो लगातार नाम आ रहा है तापमान सबसे ज्यादा होने के मामले में।
1: जी जी
0: जी जी जी जी, जी, जी, जी। तो ऐसी गर्मी में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे जो आपको थोड़ा बहुत ठंडक दे दे?
1: बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म का नाम है दूध का कर्ज।
0: हाँ जी।
1: गीत की बोले कि तुम है दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
0: तो अब आपको गीत सुनवा देते हैं आपके रेडियो सेट्स पर। सुनिए अभी अगला गीत, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत
1: धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, किन से बात हो रही है?
1: विनोद वर्मा
0: जी। विनोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं बरोठा से।
0: बरोठा?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम
0: जी। तो कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप आज?
1: पुलिस और मुजरिम है ना।
0: हाँ जी, उसका कौन सा गीत?
1: अपनी आंखों की।
0: ठीक है जी विनोद जी, मैं ये गीत देख पा रही हूँ हमारे पास उपलब्ध है, तो हम आपको ये गीत सुनवा देते हैं और ये आपके रेडियो सेट्स पर अब बस आ रहा है। आपने कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी।
1: धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। और यहाँ तो मौसम मैडम एकदम जबरदस्त, धूप तेज बढ़ गया है, उमस गर्मी है, लू भी खूब चल रहा है।
0: तो कार्यक्रम है फोन करे गीत सुने, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप आज?
1: फिल्म का नाम है भाग मिलता भाग और गीत के बोल है मस्तों का झुंड हवन करेंगे, गायक है दिव्या।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया। तो लीजिए अब आपके पसंद का ये गीत फिल्म भाग मिल्खा भाग से आपके लिए प्रस्तुत है।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर से।
0: विवेक व्यास जी,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: और मैं ठीक हूँ, आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी, मेरा नाम रक्षा तवर है।
1: अरे वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में आज?
1: आज मुझे आप सुनवा दें, फिल्म का नाम है सती सावित्री, लता मंगेशकर जी की आवाज है और गाने के बोल है जीवन डोर तुम्ही संग बांधी।
0: तो लीजिए, अब आपका गीत आपको सुनवाई देते हैं और कार्यक्रम में आपने भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: अनिल कौशले इंदौर से बात कर रहे हैं।
0: कैसे हैं अनिल जी?
1: बहुत अच्छे। हम बैंक में नौकरी करते हैं तो आज फोन लगाने का टाइम मिला, नहीं तो कभी फोन लगाने का टाइम ही नहीं मिलता हमको।
0: तो अब आप बताइए आपकी फरमाइश आज की, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: का नाम है दिल है के मानता नहीं।
0: दिल है के मानता नहीं फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: इस फिल्म का गीत है बाबला मेहता की आवाज में, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर हम आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। रिपीट, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अपनी रेडियो साथी रक्षा तंवर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कारों में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार की गौशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को गौशाला को मां सरस्वती यानी वाग्देवी का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। गंगा दशहरा के मौके पर आज जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में 3 दिन चली ग्रीष्मकालीन गिद्धगणना कल पूरी हुई। इस बार पूरे प्रदेश में 10,742 गिद्ध गिने गए, जो पिछले साल से करीब 1200 ज्यादा है। नौतपा शुरू होने के पहले ही दिन आज मौसम विभाग ने 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। और आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला कल शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शामिल कर रहे हैं पहला पत्र बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गनौरी और प्रकाश वीर राजपूत की, डोडी लोहारा बरलोदा से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम की, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की, कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। हीरो फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतला मुश्तबा खान, सादिक भाई, शाहिद भाई। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजेश शीतल, राजदीप राजेश और राशि राजेश की। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। 100 डिस्क फिल्म का गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में दिलीप ताहिर ने लिखा है, लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम ने गाया है।

अगले गीत सुनने की फरमाइश भेजिए सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का फिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली की। सुनना चाहा है जनता हवलदार फिल्म का गीत, अनवर ने इसे गाया है। मजरू के बोल हैं, राजेश रोशन ने धुन बनाई।

आपके फरमाइश कार्यक्रम में ये आखिरी गीत ले रहे हैं, जय गजानन रेडियो श्रोता संघ के कापसी रोड अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई और बाकड़े परिवार के सभी सदस्य, शिवसेना अकोला महाराष्ट्र से वहासत से कैलाश राव बाकड़े, वंदनाताई बाकड़े और बाकड़े परिवार के सदस्य, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनी गवाड़कर परी की, हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर बेर्डी से हमें अपनी पसंद भेजते हैं, और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की, इनकी पसंद पर सुनिए फिल्म जुनून।

0: सितम।
1: अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव के गाए फिल्म जुनून के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: श्रोतागण प्रणाम। सुद्धिजन पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र के चौथे प्रकरण लब्ध प्रणाशम को सुना। आज पांचवा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम अपरीक्षित कारक है। पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम।
1: कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापिते नत्र यत्कृतम। अर्थात परिणाम को बिना सोचे, बिना उसकी जानकारी प्राप्त किए किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जैसा मूर्ख नापित ने किया था। दक्षिण के किसी राज्य में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। वहां मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। भाग्य के साथ ना देने के कारण उसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई थी। निर्धनता के कारण होने वाले प्रतिदिन के अपमान से वो दुखी था।

0: सच है, निर्धनता बहुत बुरी होती है। मेरी इस निर्धनता को धिक्कार है। सम्मान, दर्प, कलाओं का ज्ञान, आनंद, रास रंग तथा सुबुद्धि, ये सभी वस्तुएं पुरुष के निर्धन होते ही चली जाती हैं। निर्धन व्यक्ति इनकी अपेक्षा करते ही उपहास का विषय बन जाता है। धन के अभाव में व्यक्ति तुच्छ हो जाता है। मैं वंशन करके प्राण त्याग दूंगा।
1: उसी रात सपने में एक मठ के साधु ने उसे दर्शन दिया और बोला,
2: श्रेष्ठी, तुम निराश क्यों होते हो? वैराग्य ग्रहण करना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे पूर्वजों द्वारा उपार्जित पद्म नामक निधि हूँ। कल प्रातःकाल इसी रूप में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मेरे मस्तक पर लाठी से प्रहार करना। मैं तुम्हारे प्रहार से स्वर्णमय होकर अक्षय निधि बन जाऊंगा।
0: क्या यह स्वप्न सत्य होगा? नहीं नहीं, असत्य भी हो सकता है। कुछ भी कहना कठिन है, असत्य ही होगा यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, क्योंकि रात दिन में धन की ही चिंता किया करता हूं।
1: मणिभद्र अभी सोच ही रहा था कि उसके केश कर्तन आदि के लिए नापित आ पहुंचा। इसी समय स्वप्न में दिए गए निर्देश के अनुसार वो भिक्षु भी प्रकट हुआ। उसे देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और पास में पड़ी हुई लाठी से उस भिक्षु के सिर पर मारा। भिक्षु स्वर्ण मूर्ति बनकर तत्काल भूमि पर गिर पड़ा। सेठ ने गोपनीय ढंग से उस सन्यासी की स्वर्ण प्रतिमा को अपने घर के भीतर रखवा दिया। फिर नापित से बोला,
0: मित्र
3: जी,
0: तुम कुछ आभूषण और वस्त्रों को रख लो। इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए।
3: नहीं होगी।
0: आवश्यकता पड़ने पर और भी धन ले जाना मित्र।
3: अच्छा, ये घटना तो अद्भुत है भाई, ना पहले कभी देखा ना सुना। वाह।
1: दूसरे दिन नापित ने प्रातःकाल उठते ही खूब बड़ी लाठी तैयार करके रख दी। फिर सन्यासियों के मठ में पहुंच गया।

0: तीन बार परिक्रमा करने के बाद उसने जोर जोर से श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर तक ऐसा करने के पश्चात वो नापित मठ के प्रधान भिक्षु के पास पहुंच गया।
1: महाराज, आपको मेरा नमन। मैं आपकी वंदना करता हूँ महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। आज समस्त भिक्षुओं के साथ भोजन ग्रहण करने मेरे घर पधारे महाराज।
2: भद्र, आप कैसी बात करते हैं?
1: जी महाराज,
2: आप हमें निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, भोजन का समय हो जाने पर हम लोग स्वयं घूमते हैं, किसी श्रद्धालु को देखकर उसके घर चले जाते हैं
1: जी।
2: और बहुत आग्रह करने पर हम केवल जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित भोजन करते हैं। आप यहाँ से तत्काल चले जाएं
1: जी,
2: और भविष्य में पुनः इस तरह की बातें न कीजिएगा।
1: भगवान, मैं आपके धर्म नियमों को जानता हूँ। बात यह है कि आपको अनेक भक्तगण बुलाते रहते हैं। इस समय मैंने ग्रंथों को बांधने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का संचय कर रखा है, और ग्रंथों को लिखने हेतु ग्रंथ लेखक को पारिश्रमिक के रूप में देने के लिए धन भी एकत्रित कर रखा है। पुनः शायद मैं ऐसा ना कर सकूं, इस कारण आप समय अनुसार विचार करके जैसी इच्छा हो करें महाराज।
0: फिर नापित घर चला आया। दोपहर होने पर मठ के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। जब भिक्षाटन के लिए भिक्षु निकले तो उन्हें आग्रह करके घर ले आया, फिर किवाड़ों को अच्छी तरह से बंद कर दिया, फिर लाठी से भिक्षुओं पर प्रहार करने लगा। मार खाने से कुछ तो मर गए, और जो जीवित बचे वे मस्तक के फूटने से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तभी उस मार्ग से नगर कोतवाल जा रहा था, उसने वो चीख सुनी।
3: उसने तो भोजन के लिए बुलाया तो बच्चे को बुलाएंगे, अभी कहेंगे
4: सोना चाहिए सोना।
5: ये कोलाहल कैसा लगता है, इसी घर से आवाजें आ रही हैं। अरे, ये रक्त रंजित सन्यासी, ओहो, ये कैसे हो गया?
0: भिक्षुओं ने कोतवाल को पूरी कथा सुना दी। सिपाही नापित को बांधकर और सन्यासियों को साथ लेकर कार्यालय पहुंचे। कोतवाल के पूछने पर नापित ने कहा,
1: महानुभाव, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरा अपराध ही क्या है। मैं और करता भी क्या। सेठ मणिभद्र के यहाँ मैंने ये घटना देखी थी और मैंने वैसा ही किया।
0: सेठ मणिभद्र को कोतवाल ने बुलाया। मणिभद्र ने स्वप्न में देखे भिक्षु की कथा सुना दी। कोतवाल ने उस अविवेकी नापित को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया।
5: सच बिना सोचे समझे उस विषय की पूर्ण जानकारी लिए बिना अगर किसी कार्य को किया जाए तो वही करना पड़ता है जो नकुल की मृत्यु के पश्चात देव शर्मा की पत्नी को करना पड़ा था। मैं सुनाता हूं, किसी नगर में देव शर्मा नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवले ने भी एक नेवले को जन्म दिया और मर गई। स्नेह के कारण उस ब्राह्मणी ने उस नेवले के बच्चे यानी नकुल का भी लालन पालन किया, किंतु वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। पुत्र स्नेह से आच्छादित होने के कारण वो संदेह करती कि कहीं ये नकुल अपने जाति दोष के कारण मेरे पुत्र का अनिष्ट न कर दे। एक दिन वो अपने पुत्र को पालने में सुलाकर जल भरने के लिए तालाब जाने लगी। जाते जाते उसने नकुल को पुत्र की रक्षा

0: का भार सौंपा। ब्राह्मणी के चले जाने के बाद देव शर्मा भी भिक्षाटन को निकल गया। संयोग से एक काला सर्प बिल से निकला। नेवले ने उस सर्प को देखते ही अपना सहज शत्रु समझकर भाई की रक्षा के लिए उसके साथ युद्ध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ब्राह्मणी के लौटने पर वो नेवला प्रसन्नता पूर्वक खून से लथपथ मुंह को लेकर अपने पराक्रम को अभिव्यक्त करने माता के निकट गया। मां तो खून देखकर शंकित हो उठी। इस दुष्ट नकुल ने मेरे पुत्र को मारकर खा लिया है। ऐसा सोचकर जल से भरे घड़े को नेवले के ऊपर पटक दिया, फिर बिलखती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर पुत्र को पूर्ववत सोते हुए देखा और पलंग के पास टुकड़े किए हुए सर्प को भी देखा। वो शोकाकुल हो उठी। देव शर्मा जब भिक्षाटन से वापस आया तो पत्नी ने उसे खूब बुरा भला कहा कि भिक्षा के लोभ से उसे पुत्र को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अत्यधिक लोभ का फल सदा कष्टदायक होता है। उसने कथा प्रारंभ की।
1: एक नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में मित्रता थी। दरिद्रता से पीड़ित होकर उन लोगों ने आपस में निश्चय किया,
2: भाइयों, हिंसक पशु से युक्त निर्जन वन में निवास करना अच्छा है। वलकल धारण करना या घास के बिस्तर पर सोना अच्छा है, परंतु दरिद्रता में जीना बड़ा कठिन है।
3: हाँ भाई, कुटुंब जन भी साथ छोड़ देते हैं। अरे, आवश्यकता पड़ने पर मित्रगण भी मुंह मोड़ लेते हैं।
4: सच है मित्र, बिल्कुल सच है। इस संसार में मनुष्य धन के बिना प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता।
5: मित्रों, मुझे लगता है धनोपार्जन के लिए हमें कहीं चलना चाहिए।
6: ठीक कहते हो मित्र, ठीक कहते हो।
5: चलो
2: चलो
1: चलो। चलते हुए वे उज्जैनी जा पहुंचे। वहां क्षिप्रा के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया। फिर भगवान महाकाल को प्रणाम करके वे अभी मंदिर से निकल ही रहे थे कि भैरवानंद नाम के एक योगी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उचित विधि से उस योगी को प्रणाम करके वे चारों उन्हीं के साथ उनके मठ तक गए। वहां पहुंचकर भैरवानंद ने पूछा,
7: भद्र, आप लोग कहां से आ रहे हैं? प्रवासी जान पड़ते हैं, क्या कोई विशेष कार्य से हैं?
2: प्रभु, हम अर्थोपार्जन के लिए निकले हुए हैं। वहीं जाएंगे जहां पहुंचकर या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है।
3: हाँ स्वामी जी, पुरुषार्थ से ही मनुष्य के मन के अनुकूल कामनाएं सिद्ध होती हैं। भाग्य का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है।
4: शरीर को कष्ट दिए बिना अनायास ही सुख की प्राप्ति नहीं होती। आलसी व्यक्ति को लक्ष्मी भी छोड़कर चली जाती है।
5: इसलिए आप हम लोगों के योग्य धनोपार्जन का कोई उपाय बताएं। हम कोई भी काम करने को प्रस्तुत हैं।
2: प्रभु, हमने सुना है कि आप अद्भुत शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष हैं। हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं।
7: देखो वत्स, हम तुम लोगों को चार सिद्ध दीपक बनाकर देते हैं। उसे लेकर तुम चारों हिमालय की ओर चले जाओ। वहां पहुंचकर जिस स्थान पर दीपक गिर जाएगा वहां तुम्हें निश्चित रूप से धन मिलेगा। दीपक गिरने वाले स्थान को खोदकर धन निकाल लेना और लौट आना। ईश्वर तुम्हारा मार्ग मंगलमय करे।
1: सिद्ध दीपकों को लेकर वे हिमालय की ओर प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। कुछ दूर चलने पर एक युवक के हाथ से दीपक गिर पड़ा। उसने उस जगह को खोदा।
5: खोदो और खोदो।
6: यही मिलेगा।
5: और गहरा खोदो।
6: देखो देखो, आवाज आ रही है।
2: मित्रों, देखो देखो, तांबे की खान।
5: हाँ, ये तो तांबे के बर्तन है।
8: हाँ, हाँ, हाँ,
5: खान है तांबे की।
8: आओ आओ, आओ आओ, जितना चाहो तांबा ले लो और लौट चलो।
3: अरे मूर्ख, इसको लेकर हम क्या करेंगे? ये तांबा जितना भी ले लो, हमारी दरिद्रता थोड़ी मिट पाएगी। उठो चलो चलो, आगे चलो आगे।
8: नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। यहीं से इच्छा अनुसार तांबा लेकर लौट जाऊंगा।
1: उसके लौट जाने पर शेष तीनों युवक आगे बढ़ गए। अभी कुछ दूर गए ही थे कि उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने उस जगह को खोदना प्रारंभ किया। वहां चांदी की खान दिखाई पड़ी।
3: अरे वाह मित्रों, देखो देखो, चांदी ही चांदी।
5: सच में चांदी?
3: आओ आओ, मन भर के चांदी ले लें और लौट चलें। आओ
5: भाई, पीछे तांबे की खान मिली थी।
3: हाँ?
5: तुम्हें चांदी?
3: हाँ?
5: तो आगे अवश्य स्वर्ण है।
3: हुँ.
5: तो हम इस चांदी से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हम तो आगे जाएंगे। चलो।
9: हाँ चलो चलो।
3: अरे तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। आप दोनों जाओ, मेरे लिए तो ये चांदी ही यथेष्ट है।
1: शेष दोनों युवक आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर तीसरे के हाथ से दीपक गिर पड़ा और उसे सोने की खान मिल गई। परंतु चौथा युवक सोने से नहीं माना। उसे लगा आगे रत्नों की खान मिलेगी।
5: अब सुनो मित्र।
9: हाँ बोलो।
5: मित्र मुझे लगता है ये सोना लेकर हम चलते हैं। भाई ये सोना हमारी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर कर देगा। मैं तो संतुष्ट हूं भाई। अगर तुम नहीं मानते तो तुम जाओ आगे भाई, मैं तो यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
1: वो युवक अकेला आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर भीषण गर्मी एवं प्यास से व्याकुल होकर लक्ष्य से भटक गया। इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसने रक्त रंजित एक व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था।

0: आप कौन है? इस प्रकार सिर पर घूमते हुए चक्र के नीचे क्यों बैठे हैं? यदि पास में कहीं जल हो तो कृपया बताने का कष्ट करें, मेरा गला सूख रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये चक्र मेरी ओर क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, नहीं। अरे ये क्या हुआ? अरे मेरे सर पर ये चक्र, अरे ये क्या हुआ? ये चक्र हटा दो मेरे सर पर से। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
1: मेरे सर पर भी यह चक्र इसी प्रकार चढ़ गया था।
0: अरे कृपया ये बताइए कि ये कब उतरेगा? मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। अरे ये चक्र हटा दो मेरे सर से।
1: आप ही की तरह जब कोई दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार सिद्ध दीपक लेकर आएगा और बातचीत करेगा, तब ये आपके मस्तक से उतरकर उसके मस्तक पर चला जाएगा।
0: आपको ये चक्र के नीचे कितने दिनों तक बैठना पड़ा था?
1: इस समय कौन राजा राज्य कर रहा है?
0: राजा वीणा वत्सराज।
1: मैं ठीक ठीक समय तो नहीं बता सकता हूँ, किंतु जब परीक्षित राजा थे तब मैं दरिद्रता से पीड़ित होकर सिद्ध दीपक को साथ लेकर इस मार्ग में आया था। यहाँ एक दूसरे व्यक्ति के सर पर यह चक्र घूम रहा था, उससे मैंने इस विषय में पूछा था और ये मेरे सर पर चढ़ गया।
0: मित्र, इस प्रकार चक्र के नीचे बैठकर आपको भोजन और जल किस प्रकार मिलता था ये भी बताइए।
1: इधर तो कोई नहीं आता, यदि लोभवश कोई आ पड़ा तो वो इसी प्रकार भूख प्यास निद्रा बुढ़ापा और मृत्यु से रहित होकर केवल वेदना का अनुभव करता है।

0: ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। इधर मित्र के अधिक विलंब करने पर स्वर्ण सिद्ध उसकी खोज में चल पड़ा। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब वो दूसरे वन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मित्र खून से लथपथ दुखी होकर बैठा है, आह भरकर रो रहा है और उसके सिर पर एक तीक्ष्ण धार का चक्र घूम रहा है। अपने मित्र की इस स्थिति को देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में पानी भर आया।
1: अरे बड़ी पीड़ा हो रही है।
2: अरे अरे अरे मित्र, ये क्या हुआ?
1: ये सब भाग्य का चक्कर है मित्र।
2: अरे लेकिन ये तुम्हारे सर पर चक्र, ये कैसे हुआ? कारण तो बताओ।
1: अरे क्या बताऊं मित्र, तुमसे विदा होकर मैं बस इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया और ये चक्र।
3: अरे मित्र, तुमको कितना मना किया था, मत जाओ मत जाओ, किंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब बताओ क्या किया जा सकता है। मित्र, तुम शिक्षित होते हुए भी बुद्धिहीन हो। विद्या की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धि के अभाव में सिंह को बचाने वाला युवक प्राण खो बैठता है।
1: कैसे मित्र?
3: सुनो, हमारी ही तरह गांव के चार युवकों ने नगर जाने का निश्चय किया। उनमें से तीन विद्वान थे, चौथा विद्वान तो नहीं था परंतु वो लोक व्यवहार में कुशल था। चारों मित्र पूर्व की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर तीनों विद्वानों ने सोचा, ये चौथा तो अज्ञानी है, ये कहीं हमारे धन में हिस्सा तो नहीं मांग लेगा। वे उसे घर जाने को कहने लगे, पर चौथा संग ही चलता रहा। कुछ दूर जाने पर जंगल में उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी मिली। तीनों विद्वानों ने उस पर विद्या की परीक्षा करने की सोची। हड्डियां एकत्रित की गईं, उसमें चर्म मांस एवं रक्त का संचार किया गया।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
3: जैसे ही उसमें प्राण संचार की प्रक्रिया शुरू हुई तो चौथा तपाक से बोला,
4: रुक जाओ,
3: तुम एक सिंह को जीवित करने जा रहे हो। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो ये हम सभी को मार डालेगा। उसकी बात सुनकर एक विद्वान बोले, मूर्ख, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं कर सकता। इसे सुनकर चौथा पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीनों विद्वानों ने उस सिंह में प्राण डाले, त्यों ही उठकर सिंह ने उन तीनों को मार डाला। चौथा सुबुद्धि धीरे धीरे पेड़ से उतरा और फिर घर चला गया। इसीलिए हे चक्रधर, मैं कहता हूं बुद्धि विद्या से बड़ी होती है।
0: सच, शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोक व्यवहार से अनभिज्ञ रहने वाला व्यक्ति उसी प्रकार उपहास का विषय बनता है जैसे वो मूर्ख युवक बना था। श्रोतागण, अब मूर्ख युवक की कथा स्वर्ण सिद्ध ने चक्रधर को सुनाई, पर हम ये कथा सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार की भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को भोजशाला को मां सरस्वती यानी मां वाग्देवी का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। गंगा दशहरा के मौके पर आज जलगंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियों और नहरों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना को और विस्तार प्रदान करेगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये हो गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। नौतपा शुरू होने के पहले ही आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। और IPL का पहला क्वालिफायर मुकाबला कल शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। श्रोताओं, बुजुर्गों की दवाओं का सुरक्षित प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत दवा गलत समय या गलत मात्रा में लेने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दवाओं के सुरक्षित प्रबंधन के लिए हमें मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे दवाओं की सूची बनाएं, सभी दवाओं के नाम, मात्रा, समय और डॉक्टर का नाम लिख कर रखें, समय पर दवा दें, दवा बॉक्स या फिर मोबाइल अलार्म का उपयोग करें ताकि कोई भी खुराक ना छूटे, डॉक्टर्स की सलाह के बिना दवा ना बदलें, दवा बंद करना, मात्रा बदलना या नई दवा जोड़ना केवल डॉक्टर की सलाह से करें, एक्सपायरी डेट ज़रूर जांचें, पुराना या एक्सपायर दवाएं तुरंत अलग करें और सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। यदि आप अपने घर पर किसी बुज़ुर्ग को दवाई देते हैं और उन्हें चक्कर, अत्यधिक नींद, एलर्जी या फिर कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, नियमित जाँच करवाएँ। उम्मीद है इन बातों को अपनाकर आप बुजुर्गों की सेहत का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। अब माहौल को थोड़ा सा सुरीला बनाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो गया है भेंट वार्ता का। अब आपको सुनवाते हैं डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव विषय पर डॉक्टर प्रीति मोतियानी से मनीष गजभिये की ये बातचीत।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजभिये। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी इस समय अपने चरम पर है, और गर्मी में होने वाली जो सबसे बड़ी या कहे कि आम बीमारी है वह है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन्हीं विषयों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रीति मोतियानी जी को। आप MD मेडिसिन हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी, धन्यवाद।
1: प्रीति जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और यह किन कारणों से होता है।
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। जब हमारे शरीर से निकलने वाले जो तरल पदार्थ की मात्रा ग्रहण किए गए पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इस मौसम में फूड पॉइजनिंग बहुत देखने को मिलता है, उल्टी, दस्त के कारण शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने लगता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मी में जो हम कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे कि शरीर में अत्यधिक पसीना आने लगता है और कम पानी का सेवन करने की वजह से भी डिहाइड्रेशन होने लगता है। दूसरा, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर है, जिनका शुगर बढ़ा रहता है अक्सर, उन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है।
1: जी, तो प्रीति जी, गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन का खतरा आखिरकार बढ़ क्यों जाता है?
2: क्योंकि गर्मी में जो शरीर का तापमान रहता है उसको नियंत्रित रखने के लिए हमें पसीना ज्यादा आता है, जिससे पसीने के द्वारा पानी और साथ में पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलने लगते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा चीज ये है कि हमें प्यास नहीं लगती है तो हम ज्यादा पानी भी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। बाहर कई बार जो धूप में लोग काम करते हैं उन्हें ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से पानी का लॉस होने लगता है शरीर से। और कई बार हम गर्मी के मौसम में चाय कॉफी का सेवन करते हैं, जो कि एक नेचुरल डायुरेटिक होता है, यानी कि शरीर से पानी को बाहर निकालता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। और इस मौसम में दस्त उल्टी भी देखने को ज्यादा मिलते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का एक मुख्य कारण होता है। जो कि
1: जी मैम, ये भी देखा गया कि अक्सर जो शरीर में पानी की कमी जो होती है उसके हम शुरुआती लक्षण किस प्रकार पहचान सकते हैं?
2: इसका सबसे जो पहला संकेत होता है वो है जैसे कि मुंह का सूखना या फिर ज्यादा प्यास लगना। कई बार मुंह में चिपचिपाहट महसूस होना, होठों में एकदम से ड्राई और क्रैक टाइप का आना होठों में, पेशाब का कम होना या पेशाब का रंग गहरा या ज्यादा पीलापन होना, या कई बार पेशाब में जलन महसूस होना, अचानक से बहुत कमजोरी होना, थकान होना, एनर्जी कम लगना। कई बार एक टर्म बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ब्रेन फॉगिंग, जिसमें पानी की कमी से सडनली पेशेंट को चक्कर आने लगता है, हेडेक बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं इसके, हीट स्ट्रोक के।
1: और किसी को भी किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य हो जाता है, इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: ज्यादा गर्मी की वजह से यदि व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगे या फिर वो अजीब तरीके की बातें करने लगे, कंफ्यूजन में आने लगे, या सडनली बेहोश हो जाए, या उसको एकदम से झटके आने लगे, या उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाए, 104 डिग्री तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए
1: जी।
2: या फिर उसकी जो त्वचा है वो बिल्कुल सूखी पड़ने लगे, ड्राई होने लगे, पसीना एकदम निकल जाए पूरे शरीर से, या फिर बहुत ज्यादा उल्टी दस्त होने लगे, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ऐसे केसेस में।
1: जी। और तेज गर्मी में खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए?
2: देखिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। जैसे प्यास नहीं हो तो भी हर 1 से 2 घंटे में थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें। यदि आप घर के बाहर काम करते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ORS या नींबू शिकंजी या कुछ ऐसी छाछ, फलों का रस या नींबू पानी वगैरह का सेवन करते रहें। हमेशा गर्मी में ध्यान रखें कि हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और अपने सर को स्पेशली ढक के रखें, टोपी या छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कैफीन है, चाय है, इनका सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता
1: जी,
2: है।
1: जी। और दिन में जैसे पानी की मात्रा की बात करें तो दिन में किसी भी व्यक्ति को कितने मात्रा में पानी पीना चाहिए, या यूं कहे कि क्या पानी पानी पीना ही मात्र काफी है या उसके साथ हम कुछ और भी ले सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, प्यास लगने का आप इंतजार ना करें गर्मी में, थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें, कम से कम 10 से 12 ग्लासेस या फिर 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। और डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण सिर्फ पानी का कम नहीं होना है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं, तो साथ में आप पानी के कुछ नींबू, छाछ, छाछ एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी होता है, ये पेट को भी ठीक रखता है आपके। फलों का रस पीते रहें, नारियल पानी पी सकते हैं, ORS पी सकते हैं, तो ये आपके पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा करते हैं।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा गया, जैसा हम सभी जान रहे कि इस समय धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो धूप में बाहर निकलते वक्त हमें किन बातों का विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है?
2: जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करके निकले, कभी भी खाली पेट घर से बाहर ना निकले, और हमेशा अपने साथ में एक पानी की बोतल जरूर रखें जिससे आप थोड़ा थोड़ा पानी का सेवन करते रहें। अपने सर को हमेशा ढकें, आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमेशा कोशिश करें कि 12 से 4 के बीच आप घर से बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और अदरवाइज थोड़ा सा धूप में बाहर निकलना आप अवॉइड करें। और जो कपड़े हैं आपके, सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। आपकी त्वचा का ध्यान रखने के लिए आप कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, सनग्लासेस वगैरह, सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी में अगर हम बात करें तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ और फल जो है हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं?
2: कुछ फल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि पानी से भरपूर होते हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, संतरा, दही, योगर्ट, पालक, तुरई की सब्जी, या फिर नींबू पानी, छाछ, ORS, ये तो नेचुरल रेमेडीज हैं, ये हमको पीते रहना चाहिए।
1: जी जी जी। और किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए?
2: परहेज की बात करें तो ज़्यादा मिर्ची और मसालेदार खाना, जैसे कि समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब का सेवन से बचे, क्योंकि ये शरीर में, पेट में गर्मी पैदा करते हैं और एसिडिटी का रिस्क भी बढ़ा देते हैं। फिर जो कैफीन, अल्कोहल वाले पदार्थ होते हैं, या ज़्यादा जो चीनी वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनको पीने से बचें, क्योंकि ये शरीर से पानी की मात्रा ज़्यादा निकालते हैं। और तीसरा हो गया, जैसे ज़्यादा गर्म पदार्थ होते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, ज़्यादा फैट वाला फूड हो गया, अदरक लहसुन हो गया, ये सब शरीर में ज़्यादा एसिडिटी बनाते हैं, और इनको पचाने के लिए हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है।
1: जी जी जी। मैम, जैसा हम लोग अक्सर जानते हैं कि बच्चे और बुज़ुर्ग है वो काफ़ी जल्दी इससे ग्रसित हो सकते हैं, तो उन्हें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: जी, बच्चों और बुज़ुर्गों में जो रहता है, प्यास का एहसास बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें बिना मांगे हर घंटे में पानी देते रहें, पानी के साथ साथ उनको ORS या फिर जूस भी देते रहें, उन्हें बिल्कुल सीधी धूप में रहने से बचाएं, धूप में बाहर ना जाने दें, और घर में भी एक पंखा और कूलर जैसा ठंडा वातावरण बनाए रखें, कभी भी उनको बंद कार में अकेला ना छोड़े, क्योंकि ऐसे में उनको डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाएगा।
1: जी, बहुत उपयोगी जानकारी, और निश्चित तौर पर आपकी जो जानकारियां है हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। अब डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को लू या हीट स्ट्रोक लग जाए तो तुरंत उसे क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए?
2: तुरंत यदि किसी को हीट स्ट्रोक लग जाए तो सबसे पहले उसके शरीर का हमको जल्दी से जल्दी तापमान कम करने की ज़रूरत होती है। 30 मिनट के अंदर हमको उसका तापमान कम करना है, नहीं तो वो बेहोश भी हो सकता है, उसको झटके भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले पीड़ित को तुरंत धूप से हटाकर किसी ठंडी छायादार जगह पर ले जाएं, और पंखे के माध्यम से या हाथ के माध्यम से उसे हवा करें, शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। उसके लिए आप एक गीली चादर या तौलिए से शरीर को ढक सकते हैं, या फिर कुछ बर्फ के पैक्स आते हैं, आइस पैक्स, उसको उनके गर्दन या हाथों के नीचे रख सकते हैं, और यदि वो होश में है, बेहोश नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा पानी या ORS पिलाएं। यदि बेहोश है तो बिल्कुल भी उसको कुछ भी पीने के लिए ना दें, तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको एडमिट करवाएं और उसको डॉक्टर को दिखवाएं।
1: जी, निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो क्या उसमें डिहाइड्रेशन के खतरे को भी ये बीमारियाँ जो है वो बढ़ाती है?
2: जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों में बार बार पेशाब आने के कारण पानी की कमी जल्दी होने लगती है, इससे उनकी नसें और ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरे जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, दिल के मरीज हैं, उनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जैसे हम वाटर पिल्स कहते हैं, जो कि शरीर से पानी निकालने का काम करती हैं, तो ऐसे में उनमें डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है।
1: जी मैम, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेगी हमारे श्रोताओं को, ताकि वे गर्मी और डिहाइड्रेशन से सुरक्षित रह सके?
2: जी, गर्मी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। याद रखिए कि आपका शरीर जो है एक मशीन की तरह ही है, जिसे ठंडा रखने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो घर से निकलते समय पानी पीकर निकलें, अच्छा नाश्ता करके निकलें, और अपने आसपास जो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उनका आप खास ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। और दूसरी चीज ये है कि यदि किसी को हीट स्ट्रोक या लू लग रही है तो उसको बुखार या इन्फेक्शन समझ के पैरासिटामोल ना दें, क्योंकि पैरासिटामोल से इसका खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो हीट स्ट्रोक है वो आपके शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से, ना कि इन्फेक्शन की वजह से।
1: जी, निश्चित तौर पर हम अपने श्रोताओं को यही कह सकते हैं।

0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव विषय पर डॉक्टर प्रीति मोतियानी से मनीष कचभिए की बातचीत। आशा करते हैं आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। श्रोताओं, सेहत की बातों और मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। इसी क्रम में हम बात करेंगे डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के बारे में। ट्विन टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी वास्तविक

वास्तविक वस्तु, मशीन, सिस्टम या प्रक्रिया की डिजिटल कॉपी बनाई जाती है। ये डिजिटल मॉडल वास्तविक वस्तु से लगातार डेटा प्राप्त करता रहता है और उसी के अनुसार अपडेट होता रहता है। और यदि इसे आसान शब्दों में समझना चाहें तो किसी वस्तु, मशीन, सिस्टम या प्रक्रिया का लाइव डिजिटल रूप डिजिटल ट्विन कहलाता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री की मशीन है, मशीन में सेंसर लगे हैं, उसका डिजिटल ट्विन कंप्यूटर में बना है। अगर मशीन गर्म होने लगे तो डिजिटल ट्विन पहले चेतावनी दे देगा, इससे मशीन खराब होने से बचती है, समय और पैसा भी बचता है। इसका उपयोग मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। बीमारी की निगरानी, सर्जरी की योजना, व्यक्तिगत उपचार हेतु डिजिटल ट्विन के फायदे भी हैं। मशीन खराब होने से पहले पता चल जाता है, रखरखाव का खर्च कम होता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है, समय की बचत भी होती है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक और मधुर गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है हेल्थ टिप्स का। जैसा हम सभी जानते हैं कि गर्मी अपने चरम पर है, तो ताजे फल हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें, पानी और जूस की मात्रा बढ़ाएं, इससे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी और साथ ही योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को। स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रमा मिश्रा के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है। इनके स्वर में सबसे पहले आप सुनेंगे देवी गीत, उसके बाद गारी और फिर दादरा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रमा मिश्रा के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ भक्ति रचनाएं सुनवाने जा रहे हैं। गायिका हैं पुष्पा रानी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पुष्पा रानी के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: कवि शिव राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत ज्वेल थीफ फिल्म से हमने लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन।

आराधना फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। एसडी बर्मन का संगीत है, गीतकार आनंद बख्शी, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में धार में प्रदेशव्यापी जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आज धार की भोजशाला में मां वागदेवी पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जन समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्थानीय कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट निर्माण जैसे जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत नीमच के हाथी मंदिर घाट पर साफ सफाई के लिए श्रमदान किया गया। वहीं अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर और रायसेन सहित प्रदेश के सभी जिलों में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह

0: एजेंसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल किए जाने का निर्देश दिया है। भोपाल में राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा आज आयोजित स्कॉलरशिप वितरण समारोह में दो मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। डॉ यादव ने छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि हजारों विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। कल यानी रविवार को खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे। यहां पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में 42.7, ग्वालियर में 44.1 और जबलपुर में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpkhadigramudyog.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। इस वर्ष की हज यात्रा में भारत से लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के गौरव दिवस पर आज माँ नर्मदा के घाट पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शिवपुरी जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज पेयजल समस्या, खाद वितरण, उपार्जन की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नरेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954

0: पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
1: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला

0: सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटे की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। कहिए दोस्तों, कैसे हैं? हमें मालूम है कि आप सभी सकुशल होंगे, लेकिन तेज गर्मी से तो हम सभी परेशान हैं। तो इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और ये जो तपिश भरी दोपहरी है, इसमें हमारी तरफ से गीतों भरी एक छांव स्वीकार कीजिए। आज के इस सुरीले सफर में आपके साथ हूँ मैं, सुनीता सिंह। लेकर उपस्थित हूँ कुछ खूबसूरत से गीत आपकी फरमाइश पर। सबसे पहले श्रोताओं के नाम बताती हूँ, उसके बाद गीत की डिटेल। ये खत आया है जिला खंडवा मध्य प्रदेश मोटक्का माफी से। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम की भी यही फरमाइश है। नेपानगर से सुदर्शन शाह, तावेश शाह, कुंश पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। और ये चिट्ठी आई है छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा।

सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। आप सबने सुनना चाहा है नीला आकाश फिल्म का गीत। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की हैं। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन। मैं एक लम्हे में दुनिया समेट सकता हूं, तो कब मिलेगा मुझसे एक पल लिख दे।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। अब्दुल्ला फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र और प्रेमाबाई। ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु भारतीय। इसी गीत को पसंद करते हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रगति नाचानी और मिथिल नाचानी, और जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। ये खत आया हुआ है धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अनुपमा यादव का। इसी गीत को पसंद करते हैं दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। और ये चिट्ठी आई है आमा खोड़रा कबीरधाम से, लिखने वाले श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा, दक्षप्रिया नेताम और सनोतिया गुना से मांगीलाल चंदेल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अब चिरागों की जरूरत ही नहीं, चांद इस दिल में छुपा हो जैसे, जी में आता है सजदा कर लें, दिल की आवाज खुदा हो जैसे।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन दोस्तों की पसंद पर है। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। ग्राम सौगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। नागर कोहरा से जग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू और लल्ला साहू। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं दीपक कुमार, रोशन, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तिलदा से प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया रानी, ओशीम कुमार और सोमेन कुमार चंद्र। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं मिली फिल्म में किशोर कुमार को। गीत लिखा है योगेश ने और संगीत एस डी बर्मन का है। कहीं पलकें ओस से धो गई, कहीं दिल को फूलों से भर गई, तेरी याद सोलह सिंगार है, जिसे छू दिया वो संवर गई।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है बहू बेगम फिल्म से। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं, बोल साहिल लुधियानवी के और धुन रोशन की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पीपरपारा मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। सोनुआ झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और नंदू महतो। और घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, कोई आहट न हो दर पे मेरे और तू आए।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सबकी है। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवी शंकर तामुरिया, अजय रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं वर्मा मलिक का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है कर्तव्य। अनुरोध आप सबका है। सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव, निम्बालकर और संदीप पाटिल, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन, साथ में है तानिया। देख मोहब्बत का दस्तूर, तू मुझसे मैं तुझसे दूर, दिल की धड़कन कहती है आज कोई आएगा जरूर।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार की भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा में शामिल हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में हो रही चूक पर चिंता जताते हुए

0: ने कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। अदालत ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है। गंगा दशहरा के मौके पर आज जलगंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियों और नहरों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना को और विस्तार प्रदान करेगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। और नौतपा शुरू होने के पहले ही दिन आज मौसम विभाग ने 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू चलने का अलर्ट है। विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 6:30 और रात 8:15। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन सुनिए 6:45 पर। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आपकी फरमाइश प्रसारण समय रात 10 बजे और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित राम स्वरूप रतौनिया का तबले पर बजाया झपताल। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए रमा मिश्रा के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले आप सुनेंगे देवी गीत, उसके बाद गारी और फिर अंत में दादरा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रमा मिश्रा के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कुछ भजन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। कलाकार हैं पुष्पा रानी।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत गुलाम फिल्म से हमने लिया है। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं, गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित। और इसके बाद आप सुनेंगे रॉक स्टार फिल्म का गीत।

और अब आइए सुनते हैं साजन फिल्म का गीत, आवाज़ अलका याग्निक की है, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण, और इसके बाद आप सुनेंगे जब वी मेट फिल्म का गीत।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। अदालत ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज धार की भोजशाला में माँ वाग्देवी की पूजा में शामिल होकर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को भोजशाला को माँ सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। गंगा दशहरा के मौके पर आज जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियों और नहरों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक व पर्यावरणीय चेतना को और विस्तार प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक वेबसाइट mpkhadigramudyog.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। वे वहां पर रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदानों की ओर बढ़ेंगे, जहां से वे हज के मुख्य अनुष्ठान के तौर पर प्रार्थना करेंगे। इस वर्ष की हज यात्रा में भारत से लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी भोपाल के साथ। पेश है उर्दू प्रोग्राम आईना।

शख्सियत जाजिम नज़र थी। उनको खुदा ने बहुत सलाहियतें वदियत की थीं। उनके ख़ानदान में शायर व अदीब मौजूद थे जिनसे उन्होंने फैज़ हासिल किया। बेनियाजी, साफगोई, मोहतात रवैया जैसी खसूसियात उनमें मौजूद थीं। दयानतदारी और सच्चाई ने उनकी शख्सियत को संवारा था। अबू मोहम्मद सहर का नाम अबू मोहम्मद अबुल कासिम था जो उनके वालदेन ने रखा था। उनके वालदेन का अवाइल उम्र में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए नाना इजहार आलम के ज़ेर साया परवरिश से परवाख्त हुई। आपकी इब्तदाई तालीम फतेहपुर में और आला तालीम इलाहाबाद में हुई। 1951 में एमए उर्दू किया। उसके बाद भोपाल के गवर्नमेंट हमीदिया कॉलेज में शुबा उर्दू में बहैसियत लेक्चरर दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। अबू मोहम्मद सहर की शख्सियत में जाज़बियत थी। उनके चेहरे पर ज़हानत, आँखों में इल्म की चमक थी। उनको देखकर अजनबी शख्स का मुतवज्जह होना नागुज़ीर था। अबू मोहम्मद सहर बाअख़लाक़ मुतवाज़े शख्सियत थे। वो उसूल पसंद थे। अपने उसूलों से रूगर्दानी उनको पसंद नहीं थी। अपने दौर तालिब इल्मी से ही मुताले के शौकीन रहे। उनके मिजाज में रख रखाव, तबीयत में नफासत और तहजीबी संजीदगी शामिल थी। उनकी संजीदा मिजाजी उनसे रगबत ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनके उस्तादों को खुसूसी तौर पर मुतवज्जे किया। उन्होंने अपने शागिर्द को बहुत अजीज रखा। अबू मोहम्मद सहर न सिर्फ मुताला करते बल्कि उनसे अखस व कबूर भी करते थे। ज़माना तालिब इल्मी से उनके अदबी मजामीन उर्दू के मुक्तदर रसाइल में शाया होने लगे थे। अबू मोहम्मद सहर को ज़बान और उसके अल्फाज की दुरुस्त अदायगी की बहुत फिक्र रहती थी। उनकी कोशिश होती थी कि क्लास के तालिब इल्मों का मतन की क़रात में लहजा और इमला दोनों दुरुस्त हो। यहाँ तक कि वह शेरी मतनों की दुरुस्तगी पर भी बहुत ज़ोर देते थे। उनकी किताब उर्दू इमला और उसकी असलाह इसी फिक्र के नतीजे में ज़हूर में आई। उर्दू कसीदा निगारी का चलन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। अबू मोहम्मद सहर ने अबू मौलवी अब्दुल हक के कहने पर उस तरफ तवज्जो दी और उर्दू में कसीदा निगारी के उनवान पर पहले एक तवील मकाला तहरीर किया। उसके बाद उसमें मजीद इजाफा करके 1958 में किताबी शक्ल में तबाह कराया। अबू मोहम्मद सहर ने इस पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि उन्होंने उर्दू कसायद का इंतखाब करने के साथ ही हवाशी लिखे और अपने मुकदमे के साथ उसको किताबी शक्ल में 1969 में तबाह करवाया। उनकी मेहनत उन्हें उर्दू की इस सिंफ को दोबारा लोगों में मकबूल कर दिया और एक बावक़ार मरतबा किताब सामने आई। इस अरसे में अबू मोहम्मद सहर ने अपने PhD के मकाले की तैयारी भी जारी रखी जो उन्होंने उर्दू में अमीर मीनाई का हिस्सा के उन्वान से मुकम्मल किया, जिस पर आगरा यूनिवर्सिटी ने उनको 1969 में आला सनद से सरफराज किया। ये किताब मकाला अमीर के नाम से शाया हुई और इसका दूसरा एडिशन चंद साल पेशतर अमरीका से शाया हुआ। अबू मोहम्मद सहर के तनकीदी और तहकीकी कामों का दायरा बहुत वसी है। वो तहकीक के उसूलों के बारीकियों के पारख थे। अपने तहकीकी मजामीन में उनका बहुत ख्याल रखते थे। अपने अक्सर मजामीन में उन्होंने तहकीक के फ़न से मुतालिक इजहार ख्याल भी किया है। 1961 में उनके मजामीन का मजमूआ तनकीद और तजिया मंजर आम पर आया जिसमें उन्होंने अपने कारी को उसूल तनकीद से मुतालिक रहनुमाई की है। उनका मानना था कि तहकीक के लिए खुला हुआ जहन, मारूजियत और एतदाल तवाजन ज़रूरी है। उनके कई मजामीन गैर मतबूआ थे। उनके इंतकाल के बाद उनको अबू मोहम्मद सहर की अहलिया ने मुरतब करके अदबी तहकीक़ और तनकीद के नाम से 2002 में शाया करवाया। अबू मोहम्मद सहर ने गालिब के ऊपर भी बड़ा वाकई काम किया है। उन्होंने एक मुफसल मजमून 1960 में गालिब व फ़लसफ़ा गालिब तहरीर किया जो अरबाब हलवक्त को बहुत पसंद आया। हकीम अब्दुल हमीद हमदर्द वाले ने गालिब के मुतालिक मजामीन तरतीब देते वक्त अबू मोहम्मद सहर के इस मजमून को अपने इंतखाब में सबसे पहले शामिल किया। 1969 में गालिब की सदाला जश्न के मौके पर डॉक्टर साहब ने उसके लिए गालिब सदी की इस्तेलाह वजा की जो बहुत पसंद की गई। गालिब पर उनकी दूसरी किताब गालिबियात और हम 1984 में मंजर आम पर आई। अबू मोहम्मद सहर के मजामीन में नुक्ता रसी और नुदरत पाई जाती है जिसकी वजह से उनकी तहरीरों की अहमियत बढ़ गई है। कुदरत ने उनको खलाकाना जहन वदियत किया था जिसकी मिसालें उनकी तहकीक और तनकीद में जा बजा मिलती हैं। अबू मोहम्मद सहर के अदबी सफ़र की इब्तिदा गुशायरी से हुई थी मगर उन्होंने तनकीद और तहकीक को अपने जोला निगाह का महवर बनाया

0: शायरी पर से पुश चली गई। अबू मोहम्मद शहर को शायरी से भी रगबत थी, शेर कहते थे मगर कम कम। गज़ल हमारी तहजीब की रिवायत है, यह हमारी ज़िंदगी का इजहार और हमारी ज़िंदा रिवायत का इर्तका भी है। अबू मोहम्मद शहर ने अपने क़ुव्वत मुतख़य्यला से शायरी में नए नए मज़ामीन के साथ फरसूदा मज़ामीन को भी नए अंदाज से बरता और गज़ल में पेश किया। उनके दो मजमूए बर्ग गज़ल और बर्ग शहर शाया हुए। अबू मोहम्मद शहर के कलाम में इंसानी जज्बात की तर्जमानी है। उनकी गज़लों में इश्क वारदात, इश्क और मामलात इश्क के अलावा इश्क की फ़लसफ़ाना तर्जमानी भी है। अबू मोहम्मद शहर ने अपने गज़लों में रिवायती और जदीद एहसास को बहुत नखूबी बयान किया है। वो जग बीती भी है और आप बीती भी। उन्होंने जैसा महसूस किया उसको दिलकश अंदाज में शेर के पेकर में ढाल दिया है। उनका लहजा साफ और सादा और सुलझा हुआ है। उनके यहाँ ज़बान की बेसाख्तगी और बर्जिस्तगी है। अबू मोहम्मद शहर की शायरी में नुज़रत ख़याल और नुज़रत मिसाल की जा बजा मिसालें मिलती हैं। खाक से ताबा फलक तेरी निगाहों का तिलिस्म, ठहरा ठहरा सा जहाने गुजरा आज भी है। तर्क उल्फत में भी उल्फत के निशा बाकी हैं, काफला लुट के तेरी समत रफा आज भी है। तेरा मिलना और बिछड़ना क्या कहें किससे कहें, एक जाने ना तवा पर जुर्म क्या क्या हो गए। दिल के ईवा में अफसरदा चिरागों का धुआं, दूर कुछ दूर हो यादों के खडर जलते हैं। एक ये नाम व नमूद की ख्वाहिश का, ये इल्म व फन की नुमाइश का, अपना ताकीदा है ये शहर, मेयार नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई बुता में हमने पढ़ी थी नमाज इश्क, फिर क्या हुआ ये कंज शहीदा से पूछिए। क्या हाल है दिल का ऐसे अब कौन बताए, महफिल से तेरे दीदा गम लेके चले हैं। कांटों का गिला क्या है कि हम राह तलब में एक दश्त बला जेर कदम लेके चले हैं। अबू मोहम्मद शहर को तारीख गोई से भी शगफ था। ममनून हसन खां के इंतकाल पर हिजरी ईसवी सन में अलग अलग तारीखें कही हैं। अबू मोहम्मद शहर एक नाबगा शख्सियत थे। उन्होंने जो काम किए पूरी दयानतदारी और लगन से किए और उनका हक अदा कर दिया। वो बेहतरीन मुअल्लिम, काम के धनी और तहक़ीक़ तनकीद के नब्ज़ शनास थे। उनकी अदबी कावशों का अदबी दुनिया ने एतराफ़ किया है। ऐसे ही लोगों पर इकबाल का ये शेर सादिक़ आता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
1: सामईन अजीज़, आपने सुनी डॉक्टर रज़िया हामिद की नहायत जामे मालूमाती और दिल नशीं तकरीर, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अबू मोहम्मद शहर की इलमी, अदबी और तहकीकी खिदमात पर बड़ी खूबसूरती से रोशनी डाली। यकीनन ऐसी शख्सियात उर्दू अदब का कीमती सरमाया है जो अपने इल्म और कलम के जरिए हमेशा जिंदा रहती हैं। और अब वक्त है प्रोग्राम की अगली खूबसूरत पेशकश का। सामईन, गज़ल उर्दू शायरी की वो लतीफ़ सिन्फ है जिसमें दिल के जज्बात, मोहब्बत की कसक और एहसासात की नरमी बड़ी खूबसूरती से सिमट आती है। अब पेश है मशहूर शायर अहमद फराज की एक दिलकश गज़ल, जिसे अपनी मुतरन्नम आवाज़ में पेश किया है नामवर गज़ल गुलूकार ग़ुलाम अली ने। गज़ल के बोल हैं, रूह जब वजद में आए तो गज़ल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो गज़ल होती है। तो आइए समाअत फरमाते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

अमर कर देती है। सामीन इकराम, अब प्रोग्राम आईना में पेश है एक और खूबसूरत अदबी पेशकश, तो आइए समाअत फरमाते हैं मसूद रजा का मुंतखब कलाम उन्हीं की आवाज में।

ले सुकून कभी हमसे भी गुफ्तगू कीजिए फिर बहारों की।

कहते आप तो हीन आरज़ू कीजे फिर बहारों की

मतलब पेश कर रहा हूँ। समाज समय चांद उभरे तो मुस्कुराए हम, चांद उभरे तो

देख के मुस्कुराए हम, उसका एहसान है जो याद रखें, उसका एहसान है जो याद

0: तो मुस्कुराए हम फिर उदासी में डूब जाए हम। चांद उभरे तो मुस्कुराए हम।
1: सामईन अजीज, आपने समाअत फरमाया मसूद रजा से उनका खूबसूरत कलाम, जिसमें एहसासात की सच्चाई, फिक्र की गहराई और शायरी की दिलकशी नुमाया थी। यकीनन ऐसे अशार देर तक दिलो दिमाग में अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम आईना अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप अपने तासुरात, तजावीज और पसंदीदा आरा हमें खत के जरिए जरूर अरसाल कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन, डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 4620002। अब आपकी दोस्त आफरीन बानो को दीजिए इजाजत, आदाब।

0: आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक पंचतंत्र की 12वीं कड़ी।

0: श्रोतागण प्रणाम। सुदिजन पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र के चौथे प्रकरण लब्ध प्रणाशम को सुना। आज पांचवा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम अपरीक्षित कारक है। पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम,
1: कुदृष्टम कुपरिज्ञातम, कुश्रुतम कुपरीक्षितम, तन्नरेण न कर्तव्यम नापिते नत्र यत्कृतम। अर्थात परिणाम को बिना सोचे, बिना उसकी जानकारी प्राप्त किए किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जैसा मूर्ख नापित ने किया था। दक्षिण के किसी राज्य में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। वहां मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। भाग्य के साथ ना देने के कारण उसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई थी। निर्धनता के कारण होने वाले प्रतिदिन के अपमान से वो दुखी था।

सच है, निर्धनता बहुत बुरी होती है। मेरी इस निर्धनता को धिक्कार है। सम्मान, दर्प, कलाओं का ज्ञान, आनंद, रास रंग तथा सुबुद्धि, ये सभी वस्तुएं पुरुष के निर्धन होते ही चली जाती हैं। निर्धन व्यक्ति इनकी अपेक्षा करते ही उपहास का विषय बन जाता है। धन के अभाव में व्यक्ति तुच्छ हो जाता है। मैं वंशन करके

0: त्याग दूंगा।
1: उसी रात सपने में एक मठ के साधु ने उसे दर्शन दिया और बोला,
2: श्रेष्ठ जी, तुम निराश क्यों होते हो? वैराग्य ग्रहण करना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे पूर्वजों द्वारा उपार्जित पद्म नामक निधि हूँ। कल प्रातःकाल इसी रूप में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मेरे मस्तक पर लाठी से प्रहार करना। मैं तुम्हारे प्रहार से स्वर्णमय होकर अक्षय निधि बन जाऊंगा।
3: क्या यह स्वप्न सत्य होगा? नहीं नहीं, असत्य भी हो सकता है। कुछ भी कहना कठिन है, असत्य ही होगा यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, क्योंकि रात दिन में धन की ही चिंता किया करता हूं।
1: मणिभद्र अभी सोच ही रहा था कि उसके केश कर्तन आदि के लिए नापित आ पहुंचा। इसी समय स्वप्न में दिए गए निर्देश के अनुसार वो भिक्षु भी प्रकट हुआ। उसे देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और पास में पड़ी हुई लाठी से उस भिक्षु के सिर पर मारा। भिक्षु स्वर्ण मूर्ति बनकर तत्काल भूमि पर गिर पड़ा। सेठ ने गोपनीय ढंग से उस सन्यासी की स्वर्ण प्रतिमा को अपने घर के भीतर रखवा दिया। फिर नापित से बोला,
3: मित्र
4: जी,
3: तुम कुछ आभूषण और वस्त्रों को रख लो। इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए।
4: नहीं होगी।
3: आवश्यकता पड़ने पर और भी धन ले जाना मित्र।
4: अच्छा, ये घटना तो अद्भुत है भाई, ना पहले कभी देखा ना सुना। वाह।
1: दूसरे दिन नापित ने प्रातःकाल उठते ही खूब बड़ी लाठी तैयार करके रख दी। फिर सन्यासियों के मठ में पहुंच गया। 3 बार परिक्रमा करने के बाद उसने जोर जोर से श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर तक ऐसा करने के पश्चात वो नापित मठ के प्रधान भिक्षु के पास पहुंच गया।
4: महाराज, आपको मेरा नमन। मैं आपकी वंदना करता हूँ महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। आज समस्त भिक्षुओं के साथ भोजन ग्रहण करने मेरे घर पधारे महाराज।
5: भद्र, आप कैसी बात करते हैं?
4: जी महाराज,
5: आप हमें निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, भोजन का समय हो जाने पर हम लोग स्वयं घूमते हैं, किसी श्रद्धालु को देखकर उसके घर चले जाते हैं
4: जी।
5: और बहुत आग्रह करने पर हम केवल जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित भोजन करते हैं। आप यहाँ से तत्काल चले जाएं
4: जी,
5: और भविष्य में पुनः इस तरह की बातें न कीजिएगा।
4: भगवान, मैं आपके धर्म नियमों को जानता हूँ। बात यह है कि आपको अनेक भक्तगण बुलाते रहते हैं। इस समय मैंने ग्रंथों को बांधने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का संचय कर रखा है, और ग्रंथों को लिखने हेतु ग्रंथ लेखक को पारिश्रमिक के रूप में देने के लिए धन भी एकत्रित कर रखा है। पुनः शायद मैं ऐसा ना कर सकूं, इस कारण आप समय अनुसार विचार करके जैसी इच्छा हो करें महाराज।
1: फिर नापित घर चला आया। दोपहर होने पर मठ के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। जब भिक्षाटन के लिए भिक्षु निकले तो उन्हें आग्रह करके घर ले आया। फिर किवाड़ों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर लाठी से भिक्षुओं पर प्रहार करने लगा। मार खाने से कुछ तो मर गए, और जो जीवित बचे वे मस्तक के फूटने से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तभी उस मार्ग से नगर कोतवाल जा रहा था, उसने वो चीख सुनी।
0: उसने तो भोजन के लिए बुलाया था, नगर रक्षक को बुलाएंगे, अभी कहेंगे।
6: सोना चाहिए साला।
7: ये कोलाहल कैसा? लगता है इसी घर से आवाजें आ रही हैं। अरे ये रक्त रंजित सन्यासी, ओहो ये कैसे हो गया?
1: भिक्षुओं ने कोतवाल को पूरी कथा सुना दी। सिपाही नापित को बांधकर और सन्यासियों को साथ लेकर कार्यालय पहुंचे। कोतवाल के पूछने पर नापित ने कहा,
4: महानुभाव मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरा अपराध ही क्या है। मैं और करता भी क्या। सेठ मणिभद्र के यहाँ मैंने ये घटना देखी थी और मैंने वैसा ही किया।
1: सेठ मणिभद्र को कोतवाल ने बुलाया। मणिभद्र ने स्वप्न में देखे भिक्षु की कथा सुना दी। कोतवाल ने उस अविवेकी नापित को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया।
7: सच बिना सोचे समझे, उस विषय की पूर्ण जानकारी लिए बिना अगर किसी कार्य को किया जाए तो वही करना पड़ता है जो नकुल की मृत्यु के पश्चात देव शर्मा की पत्नी को करना पड़ा था। मैं सुनाता हूं। किसी नगर में देव शर्मा नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवले ने भी एक नेवले को जन्म दिया और मर गई। स्नेह के कारण उस ब्राह्मणी ने उस नेवले के बच्चे यानी नकुल का भी लालन पालन किया, किंतु वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। पुत्र स्नेह से आच्छादित होने के कारण वो संदेह करती कि कहीं ये नकुल अपने जाति दोष के कारण मेरे पुत्र का अनिष्ट न कर दे। एक दिन वो अपने पुत्र को पालने में सुलाकर जल भरने के लिए तालाब जाने लगी। जाते जाते उसने नकुल को पुत्र की रक्षा का भार सौंपा। ब्राह्मणी के चले जाने के बाद देव शर्मा भी भिक्षाटन को निकल गया। संयोग से एक काला सर्प बिल से निकला। नेवले ने उस सर्प को देखते ही अपना सहज शत्रु समझकर भाई की रक्षा के लिए उसके साथ युद्ध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ब्राह्मणी के लौटने पर वो नेवला प्रसन्नता पूर्वक खून से लथपथ मुंह को लेकर अपने पराक्रम को अभिव्यक्त करने माता के निकट गया। मां तो खून देखकर शंकित हो उठी। इस दुष्ट नकुल ने मेरे पुत्र को मारकर खा लिया है। ऐसा सोचकर जल से भरे घड़े को नेवले के ऊपर पटक दिया, फिर बिलखती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर पुत्र को पूर्ववत सोते हुए देखा और पलंग के पास टुकड़े किए हुए सर्प को भी देखा। वो शोकाकुल हो उठी। देव शर्मा जब भिक्षाटन से वापस आया तो पत्नी ने उसे खूब बुरा भला कहा कि भिक्षा के लोभ से उसे पुत्र को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अत्यधिक लोभ का फल सदा कष्टदायक होता है। उसने कथा प्रारंभ की।
1: एक नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में मित्रता थी। दरिद्रता से पीड़ित होकर उन लोगों ने आपस में निश्चय किया।
8: भाइयों, हिंसक पशु से युक्त निर्जन वन में निवास करना अच्छा है। वलकल धारण करना या घास के बिस्तर पर सोना अच्छा है, परंतु दरिद्रता में जीना बड़ा कठिन है।
9: हाँ भाई, कुटुंब जन भी साथ छोड़ देते हैं। अरे आवश्यकता पड़ने पर मित्रगण भी मुंह मोड़ लेते हैं।
10: सच है मित्र, बिल्कुल सच है। इस संसार में मनुष्य धन के बिना प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता।
11: मित्रों, मुझे लगता है धनोपार्जन के लिए हमें कहीं चलना चाहिए।
12: ठीक कहते हो मित्र, ठीक कहते हो।
11: चलो
12: चलो चलो।
1: चलते हुए वे उज्जैनी जा पहुंचे। वहां क्षिप्रा के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया। फिर भगवान महाकाल को प्रणाम करके वे अभी मंदिर से निकल ही रहे थे कि भैरवानंद नाम के एक योगी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उचित विधि से उस योगी को प्रणाम करके वे चारों उन्हीं के साथ उनके मठ तक गए। वहां पहुंचकर भैरवानंद ने पूछा,
13: भद्र, आप लोग कहां से आ रहे हैं? प्रवासी जान पड़ते हैं, क्या कोई विशेष कार्य से हैं?
8: प्रभु, हम अर्थोपार्जन के लिए निकले हुए हैं। वहीं जाएंगे जहां पहुंचकर या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु को प्राप्त करेंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है।
9: हाँ स्वामी जी, पुरुषार्थ से ही मनुष्य के मन के अनुकूल कामनाएं सिद्ध होती हैं। भाग्य का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है।
10: शरीर को कष्ट दिए बिना अनायास ही सुख की प्राप्ति नहीं होती। आलसी व्यक्ति को लक्ष्मी भी छोड़कर चली जाती है।
11: इसलिए आप हम लोगों के योग्य धनोपार्जन का कोई उपाय बताएं। हम कोई भी काम करने को प्रस्तुत हैं।
8: प्रभु, हमने सुना है कि आप अद्भुत शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष हैं। हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं।
13: देखो वत्स, हम तुम लोगों को चार सिद्ध दीपक बनाकर देते हैं। उसे लेकर तुम चारों हिमालय की ओर चले जाओ। वहां पहुंचकर जिस स्थान पर दीपक गिर जाएगा, वहां तुम्हें निश्चित रूप से धन मिलेगा। दीपक गिरने वाले स्थान को खोदकर धन निकाल लेना और लौट आना। ईश्वर तुम्हारा मार्ग मंगलमय करे।
1: सिद्ध दीपकों को लेकर वे हिमालय की ओर प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। कुछ दूर चलने पर एक युवक के हाथ से दीपक गिर पड़ा। उसने उस जगह को खोदा।
12: खोदो
11: और खोदो,
12: यही मिलेगा।
11: और गहरा खोदो।
12: देखो देखो, आवाज आ रही है।
8: मित्रों, देखो देखो, तांबे की खान।
11: हाँ, ये तो तांबे के बर्तन है। हाँ,
8: हाँ, हाँ,
11: एक खान है तांबे की।
8: आओ आओ, जितना चाहो तांबा ले लो और लौट चलो।
9: अरे मूर्ख, इसको लेकर हम क्या करेंगे? ये तांबा जितना भी ले लो, हमारी दरिद्रता थोड़ी मिट पाएगी। उठो, चलो चलो, आगे चलो आगे।
8: नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। यहीं से इच्छा अनुसार तांबा लेकर लौट जाऊंगा।
1: उसके लौट जाने पर शेष तीनों युवक आगे बढ़ गए। अभी कुछ दूर गए ही थे कि उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने उस जगह को खोदना प्रारंभ किया। वहां चांदी की खान दिखाई पड़ी।
9: अरे वाह मित्रों, देखो देखो, चांदी ही चांदी।
12: चांदी,
9: आओ आओ, मन भर के चांदी ले लें और लौट चलें। आओ
12: भाई, पीछे तांबे की खान मिली थी।
9: हाँ?
12: तुम्हें चांदी?
9: हाँ?
12: तो आगे अवश्य स्वर्ण है। तो हम इस चांदी से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हम तो आगे जाएंगे। चलो।
11: हाँ चलो चलो।
9: अरे तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। आप दोनों जाओ, मेरे लिए तो ये चांदी ही यथेष्ट है।
1: शेष दोनों युवक आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर तीसरे के हाथ से दीपक गिर पड़ा और उसे सोने की खान मिल गई। परंतु चौथा युवक सोने से नहीं माना। उसे लगा आगे रत्नों की खान मिलेगी।
12: अब सुनो मित्र।
11: हाँ बोलो।
12: मित्र, मुझे लगता है ये सोना लेकर हम चलते हैं। भाई, ये सोना हमारी सात पीढ़ियों की दरिद्रता दूर कर देगा। मैं तो संतुष्ट हूं भाई। अगर तुम नहीं मानते तो तुम जाओ आगे। मैं तो यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
1: वो युवक अकेला आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर भीषण गर्मी एवं प्यास से व्याकुल होकर लक्ष्य से भटक गया, इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसने रक्त रंजित एक व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था।

0: आप कौन है? इस प्रकार सिर पर घूमते हुए चक्र के नीचे क्यों बैठे हैं? यदि पास में कहीं जल हो तो कृपया बताने का कष्ट करें, मेरा गला सूख रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये चक्र मेरी ओर क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, अरे ये क्या हुआ? अरे मेरे सर पर ये चक्र, अरे ये क्या हुआ? ये चक्र हटा दो मेरे सर पर से। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
1: मेरे सर पर भी यह चक्र इसी प्रकार चढ़ गया था।
0: अरे कृपया ये बताइए कि ये कब उतरेगा? मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। अरे ये चक्र हटाना मेरे सर से।
1: आप ही की तरह जब कोई दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार सिद्ध दीपक लेकर आएगा और बातचीत करेगा, तब ये आपके मस्तक से उतरकर उसके मस्तक पर चला जाएगा।
0: आपको ये चक्र के नीचे कितने दिनों तक बैठना पड़ा था?
1: इस समय कौन राजा राज्य कर रहा है?
0: राजा वीणा वत्सराज।
1: मैं ठीक ठीक समय तो नहीं बता सकता हूँ, किंतु जब परीक्षित राजा थे तब मैं दरिद्रता से पीड़ित होकर सिद्ध दीपक को साथ लेकर इस मार्ग में आया था। यहाँ एक दूसरे व्यक्ति के सर पर यह चक्र घूम रहा था। उससे मैंने इस विषय में पूछा था और ये मेरे सर पर चढ़ गया।
0: मित्र, इस प्रकार चक्र के नीचे बैठकर आपको भोजन और जल किस प्रकार मिलता था, ये भी बताइए।
1: इधर तो कोई नहीं आता। यदि लोभवश कोई आ पड़ा तो वो इसी प्रकार भूख, प्यास, निद्रा, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित होकर केवल वेदना का अनुभव करता है।

0: ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। इधर मित्र के अधिक विलंब करने पर स्वर्ण सिद्ध उसकी खोज में चल पड़ा। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब वो दूसरे वन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मित्र खून से लथपथ दुखी होकर बैठा है, आह भरकर रो रहा है और उसके सिर पर एक तीक्ष्ण धार का चक्र घूम रहा है। अपने मित्र की इस स्थिति को देखकर वो बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों में पानी भर आया।
1: अरे बड़ी पीड़ा हो रही है।
2: अरे अरे अरे मित्र, ये क्या हुआ?
1: ये सब भाग्य का चक्कर है मित्र।
2: अरे लेकिन ये तुम्हारे सर पर चक्र, ये कैसे हुआ? कारण तो बताओ।
1: अरे क्या बताऊं मित्र, तुमसे विदा होकर मैं बस इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया और ये चक्र।
3: अरे मित्र, तुमको कितना मना किया था, मत जाओ मत जाओ, किंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब बताओ क्या किया जा सकता है। मित्र, तुम शिक्षित होते हुए भी बुद्धिहीन हो। विद्या की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धि के अभाव में सिंह को बचाने वाला युवक प्राण खो बैठता है।
1: कैसे मित्र?
3: सुनो, हमारी ही तरह है, गांव के चार युवकों ने नगर जाने का निश्चय किया। उनमें से तीन विद्वान थे, चौथा विद्वान तो नहीं था परंतु वो लोक व्यवहार में कुशल था।
1: अच्छा।
3: चारों मित्र पूर्व की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर तीनों विद्वानों ने सोचा, ये चौथा तो अज्ञानी है, ये कहीं हमारे धन में हिस्सा तो नहीं मांग लेगा। वे उसे घर जाने को कहने लगे, पर चौथा संग ही चलता रहा। कुछ दूर जाने पर जंगल में उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी मिली। तीनों विद्वानों ने उस पर विद्या की परीक्षा करने की सोची। हड्डियां एकत्रित की गईं, उसमें चर्म मांस एवं रक्त का संचार किया गया।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
3: जैसे ही उसमें प्राण संचार की प्रक्रिया शुरू हुई तो चौथा तपाक से बोला,
4: रुक जाओ,
3: तुम एक सिंह को जीवित करने जा रहे हो। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो ये हम सभी को मार डालेगा। उसकी बात सुनकर एक विद्वान बोले, मूर्ख, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं कर सकता। इसे सुनकर चौथा पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीनों विद्वानों ने उस सिंह में प्राण डाले, त्यों ही उठकर सिंह ने उन तीनों को मार डाला। चौथा सुबुद्धि धीरे धीरे पेड़ से उतरा और फिर घर चला गया। इसीलिए हे चक्रधर, मैं कहता हूं बुद्धि विद्या से बड़ी होती है।
0: सच, शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोक व्यवहार से अनभिज्ञ रहने वाला व्यक्ति उसी प्रकार उपहास का विषय बनता है जैसे वो मूर्ख युवक बना था। श्रोतागण, अब मूर्ख युवक की कथा स्वर्ण सिद्ध ने चक्रधर को सुनाई, पर हम ये कथा सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवा रहे हैं। हमारे महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज़ की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज़्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज़्यादा पुस्तकें भी।
2: Dr. R. Ganesh is also a prolific author, having more than 70 books to his credit.
1: श्री भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय, और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
2: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार's मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन्स सो ओवर 6 decades।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुने रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar Sahitya evam Shiksha।
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai.

0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect
2: Shri
1: within the artistic
2: Janardhan
1: community.
2: Bapu Rao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami
1: to
2: Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के

0: specially abled children, Swami Brahmadev.
1: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है. राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
1: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी

0: और केरल के अलतुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा।
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Srimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है। उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
2: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the vice president to report on the security needs.
2: Dr. H.V. Hande, chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy
2: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं। इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: Well, through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
2: Shri Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड

0: many artists faced hunger and unemployment, Sri Kedgar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर and the academic bank of credits.
1: Shri
0: as well.
1: Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishwa mein aap number 1 hai aur para olympic padak jeetne wale sabse kam umr ke bharatiya para athlete hai Praveen Kumar.
0: Shri Praveen Kumar went on to claim gold at the World Para Athletics Grand Prix with a leap of 2.05 meters, setting an Asian record. At Tokyo Paralympics, he won a silver medal.
1: Shri K. Vijay Kumar, Civil Seva.
2: Vijay Kumar ji, CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety
1: standards. Shri Devba Lad, Dada Lad, Krishi.
2: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं.
0: श्री रंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल.
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddh Rashmi

0: शिरोमणि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं, और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
2: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
2: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala. कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
2: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: श्री
2: सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has been supplied to the Indian Army.
2: Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
0: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानिवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आप से आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani

0: इस बात का प्रतीक कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेल्ला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
0: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
2: दीपिका रेड्डी कला नृत्य।
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज़ द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: Shri
1: have
2: Hari Charan Shaikia Kala Satriya Nitya.
0: Satriya Assam ki ek suprasiddh kala aur Hari Charan Shaikia ji jo ki 94 varsh ke hain wheelchair par jate hue aapne is kala ka na sirf sanrakshan kiya hai balki ise logon tak bhi pahunchaya hai aur bahut sare logon ko satriya kala का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य
0: देश के
2: एवं
0: संस्कृत विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtr ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka pramaan ki unka kitna bada contribution raha hai.
1: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
2: Shri Yumnam Jatra Singh Marnopranth Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
0: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए युवनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का
1: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
2: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा
0: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में खास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है 30 से ज्यादा उपन्यास 40 से ज्यादा लघु उपन्यास 100 से ज्यादा लघु कथाएं 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने
1: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था विज्ञान सीरियल
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन Manav Ka Vikas, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
0: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manat professor hain. संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
2: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely

0: And we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवा रहे थे हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं

0: साथ भी लगे।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के

0: अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है। और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए गए। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार में सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में LPG का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक वेबसाइट mpkhadigramudyog.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और IPL का पहला क्वालिफायर मुकाबला कल शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से

0: नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
0: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
6: अरे ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ?
6: अरे
5: बचो,
6: फटने जाओ,
5: सब निकाल दो, पीछे हटो,
6: जमीन पर लेट जाओ, तुम्हारी निकल रहा है।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
9: Yes, come in.
8: Sir.
9: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
9: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
9: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
9: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
7: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
9: गो अहेड यंग मैन।
7: सर,
2: दूसरे ही दिन

0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
6: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गए हैं सर।
6: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
6: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
6: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत मेरी जंग से लता मंगेशकर और सब्बीर कुमार की आवाज है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इसमें स्वर दिए हैं लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार ने।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन पंडित। इस फिल्म में कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है जैव विविधता, प्रकृति का अमूल्य खजाना, मानव जीवन का आधार। आलेख है रवि अवस्थी का, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: प्रकृति ने पृथ्वी को अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पर्वतों, नदियों और जंगलों से समृद्ध बनाया है। यही विविधता पृथ्वी पर जीवन को सुंदर, संतुलित और जीवंत बनाती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव विविधता एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्य शब्दों में जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, पौधों, सूक्ष्मजीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से है। इसमें जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनके आनुवांशिक गुण, उनके निवास स्थान शामिल होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज का आधुनिक युग विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भले ही अत्यधिक विकसित हो गया हो, लेकिन विकास की इस दौड़ में प्रकृति को गहरे संकट में डाल दिया गया है। मानव की बढ़ती आवश्यकताओं और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। वनों की कटाई, प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अनेक जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। जैव विविधता को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का अर्थ एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक अंतर से है। उदाहरण के लिए धान, गेहूं या आम की विभिन्न किस्मों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ये विविधता जीवों की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता प्रदान करती है। जैव विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। विभिन्न जीव जंतु और वनस्पतियां खाद्य श्रृंखला तथा पारिस्थितिक चक्रों को संतुलित बनाए रखते हैं। यदि किसी एक प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो उसका प्रभाव संपूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। अनेक औषधियां पौधों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा दोनों ही जैव संसाधनों पर आधारित हैं। तुलसी, नीम, अश्वगंधा और एलोवेरा जैसे पौधे औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वहीं कृषि, मछली पालन, वानिकी और पर्यटन जैसे अनेक व्यवसाय जैव विविधता पर ही निर्भर हैं। वर्तमान समय में जैव विविधता अनेक खतरों का सामना कर रही है। औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण और कृषि विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है। इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। जलवायु और भूमि प्रदूषण ने अनेक जीवों के जीवन को प्रभावित किया है। नदियों में छोड़े जाने वाले रासायनिक अपशिष्ट जलीय जीवों के लिए अत्यंत गंभीर संकट बन चुके हैं। ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वनों की कटाई रोककर अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। औद्योगिक अपशिष्टों को नियंत्रित कर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात की जाए तो यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, घने वनों और वन्य जीवों से समृद्ध राज्य है। जैव विविधता की दृष्टि से यह देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन, पर्वत, नदियां और वन्य जीव पाए जाते हैं जो इसे जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। राज्य की भौगोलिक विविधता यहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को विशेष पहचान प्रदान करती है। मध्य प्रदेश का लगभग एक तिहाई भाग वनों से आच्छादित है। यूनेस्को ने राज्य के 3 जैव मंडल अभयारण्यों को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया है। इनमें पचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के कारण देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। निसंदेह जैव विविधता प्रकृति की वह अमूल्य धरोहर है जिस पर संपूर्ण मानव जीवन निर्भर करता है। ये केवल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का आधार है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव सभ्यता और भविष्य की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सुनिएगा प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है रायसेन जिले से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन बावड़ियों, कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। जिले की सभी 520 ग्राम पंचायतों में व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ पारंपरिक जल स्रोतों को साफ और गहरा किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। पेश है रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी की यह रिपोर्ट।
1: रायसेन जिले में जल गंगा अभियान के तहत प्राचीन बावड़ियों, कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य अत्यंत तीव्र गति से जारी है। रायसेन जिले की सभी 520 ग्राम पंचायतों में व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ पारंपरिक जल स्रोतों को साफ और गहरा किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इसी कड़ी में रायसेन जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने ऐतिहासिक पूरन तालाब पहुंचकर स्वयं श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण केवल शासकीय दायित्व नहीं है, यह एक पवित्र सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसमें हर वर्ग और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है, तभी हम अपने जल स्रोतों को जीवित रख पाएंगे। अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े इस जन आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता की पुष्टि करते हैं। रायसेन जिले ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में तय लक्ष्यों को पार कर लिया है। दूसरे चरण के तहत कुआ, बावड़ी और तालाबों की साफ सफाई व गहरीकरण का लक्ष्य 112 निर्धारित था, जिसके मुकाबले 116 स्थलों पर काम करके 100% सफलता हासिल की है। इसके साथ ही नदी तटों के गहरीकरण का कार्य भी लक्ष्य से काफी आगे निकल चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल चेतना जगाने के लिए जन अभियान परिषद द्वारा प्रभात फेरी, कलश यात्रा, जल स्रोत पूजन, जल चौपाल और बड़े पैमाने पर नारा लेखन जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां नारा लेखन का लक्ष्य 175 था, वहीं ग्रामीणों के उत्साह से 400 से अधिक स्थानों पर दीवार लेखन किया जा चुका है। प्रशासनिक मुस्तैदी और जन भागीदारी के इस सुंदर समन्वय ने रायसेन में जल संरक्षण की एक नई अलग जगाई है। इसके अलावा रायसेन जिले के शहरी क्षेत्रों में भी श्रमदान व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने बताया कि
2: ये कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और मैं कहूँगा पूरे राष्ट्र में चल रहा है, इसकी आवश्यकता भी है। प्रदेश सरकार ने 6 वर्ष भी और इस वर्ष भी इस अभियान को हाथ में लिया है और गुड़ी पड़वा से लेकर कार्यक्रम शुरू हुआ है और हम 30 जून तक इसको चलाएंगे। इससे लोगों में जागरूकता है, पानी को बचाना, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी लोगों को पीने का मिले, जमीन के अंदर पानी का संग्रहण हो, हमारे जो तालाब है, बावड़ियां, उसका संग्रहण होगा जल का, तो इससे हमारे बाकी साधन संसाधन भी रिचार्ज होंगे, पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। पानी का लगातार शोषण और दोहन होने के कारण एक जमाने में विद्युतीकरण नहीं था, पानी बहुत कम उपयोग कर पाते थे। विद्युतीकरण का हमारे सिंचाई के साधन बढ़े हैं और प्रकार का भी काम हुआ है। हमारे पहले मकान कच्चे होते थे, आज पक्के मकान बन रहे हैं। कई प्रकार के पानी का दुरुपयोग कह सकते हैं या उपयोग बढ़ा है, इसलिए पानी के एक एक बूंद बचाना, जल है तो कल है, ये धारणा सबने व्यक्त की है। ये पानी की हर बूंद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
0: हमारी दूसरी खबर है सतना जिले से। यहाँ खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। यह कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को जागरूक कर रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
3: सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभागों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 16 मई को 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ विकास खंड पंचायत प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों, किसानों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कृषि रथ के माध्यम से जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को ई टोकन, उर्वरक वितरण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक और प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कीट और रोग प्रबंधन, फसल विविधीकरण, कृषि यांत्रिकीकरण, पराली प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपायों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से खेत समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है नरसिंहपुर जिले से। जिले में सिंगरी नदी के उत्थान और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नदी के उद्गम स्थल से लेकर जहां जहां से नदी बह रही है, सभी रास्तों पर ठोस और तरल कचरे के निपटान के इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन।
4: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नदियों को संरक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल का आयोजन किया जा रहा है। नरसिंहपुर शहर में बहने वाली सिंगरी नदी के अस्तित्व को बचाने और उसके संवर्धन के लिए सिंगरी के उद्गम स्थल से लेकर उसके शहर में होते हुए आगे जाने के सभी रास्तों को बेहतर दिशा देने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सिंगरी नदी जिन जिन गाँवों से होकर गुजरती है वहाँ ठोस और तरल प्रकार के कचरे के प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर जिले के अपर कलेक्टर गजेंद्र नागेश।
5: इस वर्ष हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो मगरधा, रोसरा और नकटुआ, इसके साथ ही खमतरा और रानी पिपरिया, इनमें हमने इस चुनौती को और इस समस्या को पहचान कर कि वास्तव में नदी के लिए तकलीफ क्या है, क्या उसका कम होता हुआ पानी, क्या बहुत सारी गाद मिट्टी का इधर उधर भर जाना, क्या उसके तटबंधों का नुकसान हो जाना, या उससे भी ज्यादा बात ठोस और तरल अपशिष्ट जो स्थानीय निवासियों द्वारा वेस्टित किया जाता है। तो हमारा आकलन इसमें यह है कि इन सारी समस्याओं को हम कैसे एड्रेस करें। हमने लगभग 5 किलोमीटर के परिक्षेत्र में और उसमें भी स्पेसिफिकली लगभग 650 मीटर की परिक्षेत्र में, जिसको हम मगरधा, नकटुआ, रोसरा का संगम बोलते हैं, वहां पे हमने नदी का कोर्स करेक्शन किया है। नदी की गहराई के साथ साथ चौड़ाई भी लगभग ऑन एवरेज हमने 20 मीटर के आसपास किया। वैसा करिए जैसा नदी अपने पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयं करती है या करना चाहती है, उसको हमने वैसा किया। दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कही है कि हम उसका सौंदर्यीकरण, उसको प्लेस मेकिंग की एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम उन बसाहटों का तरल अपशिष्ट को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां से वो नदी में मिलता है, और नदी का जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र बिगड़ता है, वहां के जो पादप होते हैं, पौधे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो जलों का लगातार शुद्धिकरण करते हैं, उनको फिर से कैसे एक्वेटिक लाइफ शुरू हो पाए, यह हमारी धारणा है। हमने 6 जगहों पर ऐसे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट इकाइयां स्थापित करना शुरू किया है और उसके माध्यम से परिकल्पना ये है कि इन लगभग 850 घरों का जो पानी नदी में आता है, मगरधा, रोसरा और नकटुआ जहां से शुरू होता है, शहरी सीमा शुरू होती है, तो उनको हम कम से कम ट्रीट करके, एक सेमी ट्रीट करके भी हम सिंगरी नदी में छोड़ेंगे, और उसके वजह से हम ये मानते हैं कि सिंगरी नदी के पुनर्जीवन के कार्य को एक स्थायी आधार मिल सकेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इन सभी गांवों में फोकस करके ठोस अपशिष्ट की प्रबंधन की रणनीति बनाई है, क्योंकि बिना इसके प्रबंधन के हम नदी के संवरण, नदी के सौंदर्य वृद्धि के जैसे कोई भी काम जो करेंगे तो वो कॉस्मेटिक चेंज जैसे होंगे, स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकेंगे। अभी हम लोगों ने नदी में व्यापक स्तर पर पिचिंग का कार्य करना शुरू किया है और उसके साथ ही साथ कुछ इस तरीके का जिसके माध्यम से हम समाज को और स्थानीय निवासियों को नदी के किनारे ला सकें और वो उसके सौंदर्य का भी जो है वो लाभ ले सकें।
6: नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन।
0: हमारी अगली खबर है पन्ना जिले से, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए 151 तीर्थयात्रियों और सहायकों का चयन किया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
7: बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन कहे जाने वाले पन्ना से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों का जत्था आगामी 27 मई को द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पन्ना जिले से कुल 191 तीर्थ यात्रियों और उनके सहायकों का चयन किया गया है। पन्ना की संवेदनशील कलेक्टर उषा परमार द्वारा श्रद्धालुओं के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने हेतु 20 मई को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों उपस्थिति में ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रक्रिया संपादित की गई। इस दौरान उपस्थित जनों के प्रश्नों का समाधान भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया और संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आगामी 27 मई से 2 जून तक की अवधि की तीर्थ यात्रा के संबंध में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी धर्मस्व शाखा अनिल कुमार तलैया ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश के परिपालन में तीर्थयात्रियों के आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा पोर्टल में दर्ज कराए गए। इसके अलावा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की गई और नवीन तीर्थयात्री एवं उनके सहायक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें, इसका विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि पन्ना जिले से इस यात्रा के लिए कुल 551 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें शासन द्वारा आवंटित बर्थ अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न रेंडमाइजेशन प्रक्रिया से तीर्थयात्रियों का चयन हुआ। तीर्थयात्रियों का जत्था आगामी 27 मई को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पन्ना से खजुराहो रेलवे स्टेशन दर्शन के लिए रवाना होगा, जहां से वह द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। अब तक 31,000 से अधिक किसानों से 1,50,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 35,213 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। पेश है रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट।
8: किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक 31,000 से अधिक किसानों से 1,50,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 35,213 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। उपार्जित गेहूं में से 1,11,473 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन कराकर सुरक्षित भंडारण करा दिया गया है। किसानों के खाते में अब तक 213 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों से 28 मई तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भी इन दिनों विभिन्न खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर द्वारा खरीदी केंद्रों में अपने समक्ष गेहूं की बोरी का तौल भी कराया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव।
0: हमारी अगली खबर है राजगढ़ से, जहां कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की पहल पर शुरू हुआ संवाद से समाधान कार्यक्रम जिले में जन समस्याओं के समाधान का त्वरित माध्यम बनता जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं राजगढ़ से हमारे संवाददाता कमल बाबू खस।
9: राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अभिनव पहल संवाद से समाधान कार्यक्रम जिले में जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आम जन की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किए जाने से नागरिकों में कार्यक्रम के प्रति विशेष लगाव एवं विशेष विश्वास देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम की खास बात यह है कि कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा स्वयं प्रत्येक शिकायतकर्ता से 1-to-1 चर्चा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में समस्या का समाधान सुनिश्चित करते हैं। मौके पर ही निराकरण होने से शिकायतकर्ताओं में प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव मजबूत हो रहा है और इस पहल को अपनी समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम मानने लगे हैं। राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा।
10: माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हितग्राहियों की जो समस्या है वो सर्वोपरि है, उनका निराकरण सर्वोपरि है। इसी के तारतम्य में हम लोगों ने नए प्रारूप में जन सुनवाई कक्ष का निर्माण कराया। ऑनलाइन VC के माध्यम से सभी खंड स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई से जुड़ते हैं, आवेदकों को की समस्याओं को सुनते हैं हम लोग, त्वरित निराकरण करते हैं। इसके साथ साथ TL समाधान में हम लोग हर सोमवार को 5 हितग्राही मूलक शिकायतें जिनका निराकरण लंबे समय से नहीं हुआ है उनको हम लोग लेते हैं। शुक्रवार को इन शिकायतों को संबंधित विभाग को फॉरवर्ड किया जाता है और उसका समाधान हम लोग अगले TL में सुनिश्चित कराते हैं। राजगढ़ जिले में जन सुनवाई और हितग्राहियों की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने संवाद से समाधान कार्यक्रम स्टार्ट किया। ये मंगलवार को हम लोग 5 ऐसी शिकायतें जो हितग्राही मूलक हैं विभागों को 3 या 4 दिन पहले हम लोग अग्रेषित करते हैं। उन शिकायतों पे निराकरण विभागों से अपेक्षा की जाती है, साथ ही साथ प्रॉपर जवाब अब इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर जवाब अपडेट करने की कार्रवाई विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
9: समाचार दर्शन के लिए राजगढ़ से कमल खस।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
2: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए एक नजर डाल लेते हैं आज के शीर्ष और कल आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। 7:21 पर ग्राम सभा में सुनिएगा लोकरंग और कुछ बातचीत। रात 8 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम होगा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। रात 10 आपकी फरमाइश और 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राम स्वरूप रतोनिया का ताल झप ताल में तबला वादन आप सुन सकेंगे। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित कार्यक्रमों पर। सुबह 7:20 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। 9:15 सुरमई सवेरा का समय रहेगा 8:30 पर। 9:15 पर सुगम संगीत में राधिका चोपड़ा की गायक गजलें आपको सुनवाई जाएंगी। सुबह 9:30 शब्द सागर में वरिष्ठ कवि प्रयाग शुक्ल से शुभम तिवारी की बातचीत आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम होगा शब्द सागर। सुबह 10:05 पर फिल्म संगीत का विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम सुनिएगा गीत सागर। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का राग भैरव में ध्रुपद गायन युगल आप सुन सकेंगे। सुबह 11:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 संग्रहालय से मैं पंचतंत्र का भाग 13 आपको सुनवाया जाएगा। 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगी। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 आपकी फरमाइश आप सुन सकेंगे। कल शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। इसे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें फिल्म संगीत और कुछ विशेष चर्चाएं होंगी। कल शाम की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर 6:30 8:15 और 10:00। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। कल 7:21 पर शाम को सुनिएगा ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंट वार्ता, किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग और साथ ही बुंदेली समाचार। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा सुर्खियों में। रात 9:30 उर्दू कार्यक्रम होगा कहकशा। इसमें आप सुनेंगे महफिले समा कव्वालियों पर केंद्रित ये कार्यक्रम होगा। और कल रात्र 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेजा का युगल ध्रुपद गायन राग यमन में आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
3: असली नोट से क्यों खेल रहा है
1: ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
8: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मनाया गया गंगा दशहरा, और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम, भोपाल विदिशा सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी, उमरिया में बारिश से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार जिले में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार पुरातत्व और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा, इसके लिए उन्होंने यहाँ सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बन सिंह अजमेरा अमझेरा अंतर सिंह और अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
10: तो माँ वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसलिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर।
9: कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया और श्रमदान कर जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट का निर्माण कर जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण एवं सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। सीहोर के रहेटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर जिला स्तरीय संरक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं नीमच, कटनी, खंडवा, खरगोन, अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, श्योपुर और रायसेन में भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
9: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी पुस्तक अपनापन का विमोचन कल किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों को साझा किया है। इसका विमोचन कल नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा करेंगे।
11: ये पुस्तक केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, वो सोच है जिसने भारत को बदल दिया। 26 मई को इस पुस्तक का लोकार्पण श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और आदरणीय देवगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, ये सुब्रमण्यम हाल पूसा में करेंगे।
9: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विभिन्न नवाचारों से देश में सबसे आगे है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार से स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ये पारदर्शी व्यवस्था पूरे देश के लिए उदाहरण बनी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का श्रेष्ठ वक्फ बोर्ड है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज भोपाल के रविन्द्र भवन राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब रुक करते हैं मौसम का। आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नौतपा की शुरुआत के पहले ही दिन नर्मदापुरम में असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही तेज और तीखी धूप रही। भोपाल, विदिशा और सीहोर में भी गर्मी से लोग परेशान दिखे। उधर उमरिया जिले में नौतपा की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज से हुई। नौतपा के पहले ही दिन जिले में गलत चमक के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। अब समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग के शहडोल और उमरिया जिलों में 40 करोड़ की लागत से 3 डिग्री कॉलेज भवनों का निर्माण किया जाएगा। कटनी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विविध जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खरगोन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रस्तावित नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। जिला जेल अशोकनगर में आज बंदियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। PM एक्सीलेंस कॉलेज श्योपुर में श्योपुर जिला स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में आज लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अधिकारियों और विभागीय निर्माण अधिकारियों को कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन ऐप के जरिए चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई है। 3 दिन की गिनती में 315 गिद्ध पाए गए। गुना में कलेक्टर ने आज जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अधिकारियों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोग और भोज लोक संस्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मना गंगा दशहरा। और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी। उमरिया में बारिश से गिरा पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों अपन देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और आज से तो नौ तपा भी शुरू हो गए। तो जब गर्मी के मौसम में अपनों अपने परिवार को और अपने जो पालतू पशु हैं बिनको अपन को ख्याल रखना है। अपन को कोशिश करनी है कि गर्मी में 11 बजे से 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना जाए और बहुत ज़रूरी हो तब ही अपन घर से बाहर निकलें। और जब बाहर जाएं तो टोपी, सूती गमछा, पानी और धूप को चश्मा अपने साथ जरूर रखें। लगातार पानी पियत रहें तो जैसे कहा है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और घर वापस आकर ठंडे पानी से अपनी आँखें जरूर धोएं। जैसे कहा है कि अपनी जो आँखें हैं बिनको गर्मी में ठंडक मिलेगी। साथ ही साथ अपन को नींबू पानी, गन्ने को रस, मौसमी, संतरा, अनार, तरबूज और खरबूजा इनको सेवन जरूर करें। जैसे कहा है कि अपने जो शरीर है वो ठंडो रहता है और साथ ही साथ पानी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है। तो भैया रो जाके अलावा अपने जो बच्चा बच्ची हैं बिना भी अपन बाहर सूरज ढलने के बाद ही खेल पे बाहर जाने दें। साथ ही साथ इनके साथ में पानी जरूर रखें। जाके अलावा अपने जो पालतू पशु हैं बिने छायादार जगह में बांधें, दिन में कम से कम 2-3 बार नहलाएं और साफ स्वच्छ पानी पीने को दें। पहियारों अपने साथ कई पशु पक्षी अपने पर्यावरण में हमारे साथ रहते हैं। बिन को भी जब गर्मी में ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। बिन के लाने अपन मिट्टी की सकोरे में पानी रखें, दाना रखें जिससे वे भी गर्मी में बचे रह सकें। और अपने घर के बाहर पानी की हौद जरूर रखें जिससे बाहर घूमने वाली गाय, कुत्ता, बकरी और अन्य जो पशु हैं बिनको पीने के लाने पानी मिल सके। और यही हमारी उनके प्रति सच्ची सेवा होगी। भैयारों अपन ये जरूर ध्यान रखें कि अपन जो पक्षी हैं, पशु हैं, बिनके लाने अपन दाना पानी जरूर रखें। भैयारों चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भैया अपने जो दिए से वो पर्वों और त्योहारों को दिए से, जहाँ हर पर्व और त्यौहार को धार्मिक और सामाजिक महत्व होता है, उन्हीं पर्वों में से एक पर्व है गंगा दशहरा। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि जय देना माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा का त्यौहार बड़ी श्रद्धा, आस्था और पवित्रता से मनाया जाता है। भैयरों, राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया था, ताकि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, परंतु उनके वेग को संभालना कठिन था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया और धीरे धीरे प्रभावित किया। इसकी स्मृति में ही अपन लोग गंगा दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। गंगा को भारत की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। ये एक नदी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है, और हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है।

भैयानों, आज है सोमवार और आज अपना फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी भी है। तो आज अपन पहली फरमाइश लेते हैं ग्राम बिडूरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर, मानवी गुर्जर, नैना गुर्जर, नंदिनी गुर्जर। और इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें उत्तम सिंह कुशवाहा के स्वर में, माफ़ कीजिएगा, रतन लाल कुशवाहा के स्वर में कोई लोकगीत सुनवाएं। तो भैया रो, आज है गंगा दशहरा, तो आज अपनी शुरुआत माँ गंगा के इसी लोकगीत से अपन शुरू करते हैं।

भैया रहो, अभी अपन ने सुनो ये लोकगीत और अपन चर्चा कर रहे थे गंगा दशहरा के बारे में। भैया रहो, गंगा दशहरा के दिन लोग व्रत रखते हैं, माँ गंगा और भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है गंगा दशहरा पर 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। इस दिन गरीबों को खाना, कपड़े, धन आदि का दान किया जाता है। भैया रहो, गंगा दशहरा का त्यौहार हमें नदियों और जल स्रोतों के महत्व को समझाता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और गंगा करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों की सिंचाई करती है, अनेक लोगों को रोजगार देती है। तो भैया रहो, हमें आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि अपनी नदियों को, नहरों को हम लोग साफ और स्वच्छ रखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे। भैया रहो, अब लेते हैं अगला लोकगीत जिसकी फरमाइश की है अमलतास अमरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश से, योगेश्वर भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय और न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय और श्रीमती ललिताबाई भारतीय। इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें माधुरी शर्मा के स्वर में कोई लोकगीत सुनवाए। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

छिप जा। ये चांदनी को ब्रजगोपी क्यों कह रही है कि अरे चांदनी तू ज्यादा मत निकले, चंद्रमाते कह रही है तू बादर की ओट में छिप जा। क्यों? क्योंकि हमको अधिक कष्ट होवे है। ये चांदनी को देख के श्याम सुंदर सो मिलवे को अधिक मन करे है। तो ब्रज गोपी कह रही है

भैया रहो, अभी अपन ने सुनो ये प्यारो सुर लोकगीत। भैया रहो, अपनी जो अगली चर्चा का विषय है वो है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस एवं राहगीर योजना। भैया रहो, अपन जानते हैं, कई बार अपन ने देखो भी है कि कई बार गंभीर बीमारी के चलते समय पर इलाज न मिलने के कारण अपन अपनों को खो देते हैं। और यही बात को ध्यान में रखकर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना शुरू की गई और ये बहुत ही लाभकारी योजना। जय योजना में गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर या विशेष एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बड़े अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। और जय योजना में गंभीर मरीजों को तेज़ी से इलाज उपलब्ध होता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को बहुत अच्छी सहायता मिल जाती है जिससे उनका समय पर इलाज हो जाता है। भैया, जय योजना में आयुष्मान कार्ड धारकों को निशुल्क सुविधा मिलती है। और जय योजना में गंभीर मरीजों को तेज़ी से इलाज उपलब्ध होता है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बहुत सहायता मिलती है। भैया, जय योजना

जिन्हें में सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक या स्पाइन सर्जरी जैसी आपात स्थिति में उपयोग होते हो। और एयर एम्बुलेंस सेवा से इलाज में देरी में भी कमी होती है, गंभीर मरीजों को जान बचाने में सहायक हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा गया है। और जई के साथ साथ एक योजना और है, राहगीर योजना। भैया अपन ने कई बार देखा है ना कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और लोग वहाँ पुलिस के डर के कारण या कानूनी कार्रवाई होने के कारण उनको इलाज नहीं करवा पाते। और अपन जानते हैं कि अगर कहीं एक्सीडेंट होते हैं तो शुरुआती जो घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस समय समय पर इलाज मिल जाए तो अपन जिनकी दुर्घटना हुई होती है उनकी जान बचा सकते हैं। और जई बात को ध्यान में रखकर राहगीर योजना शुरू की गई है। और राहगीर योजना में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। और कई बार लोग अपन चर्चा हुई अपनी कि पुलिस या कानूनी प्रक्रिया के कारण घायल व्यक्ति की मदद नहीं करती, तो जय योजना के अंतर्गत मदद करने वाले व्यक्ति को सम्मान और प्रोत्साहित राशि दी जाती है। भैया इस योजना को उद्देश्य है लोगों को मानवता के लिए प्रेरित करना और सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करना। और घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अगर अस्पताल पहुंचाया जाए तो निश्चित तौर पर उसकी जान बचाई जा सकती है। भैया पीएम श्री एम्बुलेंस और राहगीर योजना मानव सेवा के लिए एक सराहनीय कदम है। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं अगला फरमाइशी लोकगीत, जिसकी फरमाइश की है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें कोई भी लोकगीत सुनवाया जाए, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

भैयारों, अभी अपन ने सुनो ये प्यारे सो लोकगीत, और अपन देख ही रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की मांग भी बढ़ती जा रही है और उनका कीमत भी बढ़ती जा रही है, और कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इनकी उपलब्धता कम होना। और अपन देख ही रहे हैं कि अपना जो जीवन है वो बाकेलाने पेट्रोलियम पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी को तेल हो, प्राकृतिक गैस हो या अन्य कोई और चीज़ें हों, इन सब का परिवहन, उद्योग, कृषि और अपने घर के कामों में बहुत उपयोग होता है। और अपन देख ही रहे हैं कि आज के समय में चाहे कोई भी चीज़ हो वो पेट्रोलियम पदार्थ पर ही निर्भर है, लेकिन अपन ये नहीं जानते कि बहुत सीमित मात्रा में है। तो अपन को कहा है कि इनको अत्यधिक जो उपयोग है वो अपने भविष्य के लाने खतरा हो सकता है। तो जाके लाने कहा है कि अपन को पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करनी चाहिए, उनकी उपयोगिता को बढ़ाना चाहिए। भैया पेट्रोलियम पदार्थ जो है प्राकृतिक संसाधन है, जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इन्हें अपन जल्दी तैयार नहीं कर सकते, और बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के कारण पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो लगातार बढ़त जा रही है। तो जहाँ से कहा है कि इनमें कमी हो रही है, और साथ ही साथ जो है पर्यावरण भी अपनों प्रदूषित हो रहा है। क्या है कि भैयारों, इन वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, और अपन देख ही रहे हैं कि गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, और गर्मी लगातार बढ़वे को सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। तो अपन को इनकी बचत करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए कि अपने जो निजी वाहन हैं जिनको अपन को कम से कम उपयोग करने चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, इनको अपन को उपयोग करने चाहिए। भैया रो, चर्चा अपनी चलत रहेगी। अब अपन लेते हैं अपनों अगलो फरमाइशी लोकगीत, जाकि फरमाइश की है ग्वाली ग्राम व पोस्ट ताल गांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल, प्रताप सिंह नागल, अभिषेक कुमार नागल, शिवम कुमार नागल, इन्होंने

0: फरमाइश की है कि इन्हें महावीर सिंह भदौरिया के स्वर में कोई लोकगीत सुनवाए। तो आइए सुनते हैं महावीर सिंह भदौरिया के स्वर में ये लोकगीत।
1: आज भक्त

भैयारों अब ये पन्ने सुनो, ये प्यारो सुन लो गीत। और अपन चर्चा कर रहे थे कि पेट्रोलियम पदार्थों की अपन को बचत करनी है, जाके लाने अपन क्या करें कि अगर अगर अपन को छोटी दूरी पे जाना है तो अपन कोशिश करें साइकिल या पैदल अपन उपयोग करें। साथ ही साथ जैसे कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होती है, साथ ही साथ अपने जो वाहन हैं बिनकी अपन को नियमित सर्विसिंग करना है और सही तरीके से रखरखाव करने पे ईंधन भी कम खर्च होता है। और अपन देखा था ना कि ट्रैफिक सिग्नल पर लंबे समय तक वाहन को अपन को बंद कर देना चाहिए और

अपन कोशिश करें तेज़ गति से वाहन को ना चलाएं। जहाँ से कहा है कि पेट्रोलियम अपने जो पदार्थ हैं इनकी बचत होगी, पेट्रोल डीजल की बचत होगी, साथ ही साथ अपन दुर्घटना से भी बचे रह सकते हैं। जाके अलावा अपन को कोशिश करनी चाहिए कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग लें, जहाँ से कहा है कि अपनों जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। भैयानों चलते चलते अब अपन आखिरी फरमाइशी लोकगीत देते हैं, जिसकी फरमाइश की है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें कोई भी लोकगीत सुनवाएं। तो आइए सुनते हैं उपेंद्र नाथ शर्मा के स्वर में ये प्यारा सा लोकगीत।

भैया रहो, अभी अपन ने सुनो ये प्यारा सा लोकगीत, और अब हो गई ये चलबे की बेला। तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, भारत अमरीका संबंधों को नई मजबूती पर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती। पिनाक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: पिनाक जी। एक बेहद अहम दौरा है अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में, और भारत अमरीकी संबंधों को नई मजबूती देने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के शब्द सुने।
4: I think where the United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
2: पिनाक जी, एस जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की तरह ही भारत इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है वो सर्वोपरि है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
3: देखिए, हर एक देश अपनी जो इंटरेस्ट है उसको सबसे नेचुरली प्रायोरिटी देती है। अब उसमें ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कभी, अच्छा ठीक है आप ये करिए तो हम ये करेंगे। पर जो ट्रंप साहब ने नीति अपनाई है वो थोड़ा सा और पिछले प्रेसिडेंटों से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि वो उस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि अमेरिका को क्या फायदा है वो सबसे पहले वो देख रहे हैं। भारत भी हमेशा देखता है कि भारत का क्या फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत है, काफी गहराई है, पर हमारे डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल है, पावर इक्वेशन जो होता है वो अलग अलग है, लोग डिफरेंट हैं, उनकी सिस्टम अलग है, वो डिफरेंट पीपल हैं, तो इसमें तो होता ही है, डिफरेंसेस तो होंगे ही, ये नॉर्मल होता है। तो इसीलिए हम लोग बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, उसमें से जब कुछ मुद्दा निकलता है इस पे दोनों तरफ राजी होते हैं तब आगे बढ़ती है बात।
2: जी पिनाक जी, आइए सुनते हैं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के शब्द।
5: एंड वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दैट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गोइंग इनटू द 21st सेंचुरी गिवन द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस न्यू एरा इज इंडिया। इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट आई नो दैट वी हैव दिस वेरी वैल्यूएबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद एंड वी शेयर सो मेनी वैल्यूज एंड सो मेनी कॉमन इंटरेस्ट्स। एंड सो ऑब्वियसली आई ट्राई टू गेट अराउंड द वर्ल्ड, आई विल ट्राई टू गो टू अदर सेलिब्रेशंस ऑफ आवर 250th बर्थडे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो आई डाउट एनी विल हैव अ प्रोडक्शन लाइक दिस वन, बट I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly, for the people of other countries working together as well.
2: पिनाक जी, मार्को रूबियो ने कहा कि न सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में रहने वाले लोगों के लिए भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो उन सब के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पार्टनरशिप्स अमेरिका की हैं उनमें भारत की पार्टनरशिप को अमेरिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और समझता है कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते वक्त भारत अमेरिका के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस पर?
3: स्टेटमेंट में तो काफी चीजें उन्होंने कही जो अच्छी हैं, पर इसका जो नतीजा अगर असली निकालना है तो वो नेगोशिएशन से ही निकलेगा। जैसे हमारे ट्रेड नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं तो उसका क्या होगा, फाइनली उसका रूप क्या होगा वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो बातें सेक्रेटरी रूबियो ने कही क्या उसका कोई झलक उसमें दिखाई देता है, ये हम लोग असेस करेंगे, क्योंकि कहना एक बात है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अमरीका और इंडिया के संबंध जो है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करेगा बहुत लोगों को, हमारे देश को तो करेगा ही, उनके देश को करेगा और बाकी देशों को भी करेगा, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। अमेरिका तो है ही मिलिट्रली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री, और इंडिया का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारे संबंध है ये इन्फ्लुएंस करेगा, दुनिया को करेगा, रीजन को करेगा और दोनों मुल्कों को करेगा।

0: कई बार कोशिश की गई कि व्यवसाय की डील क्रैक की जाए, ट्रेड नेगोशिएशन किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, पर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि रशिया पर लगे जो सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंद हैं, वो इंडिया की तरफ टारगेट नहीं किए गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ तो हैं, लेकिन भारत और रूस के जो संबंध हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये बात कितनी सच है और असल में प्रैक्टिकली कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि इसका असर इंडिया यूएस रिलेशंस पर पड़ रहा है?
1: इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सैंक्शंस का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है
0: जी,
1: क्योंकि हम लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है, और फिर तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमको सस्ते में मिल रहा था तेल। तो ये कहना कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं है, शायद कुछ हद तक सही है, पर बात तो यह है जो भी रशिया के साथ तेल खरीदता तो सबको इफेक्ट किया है, उसमें इंडिया भी है। तो हम तो उस नजरिए से देखेंगे कि हमको क्यों इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हो जिसमें हमें इफेक्ट हो रहा है। एक स्तर पर आप कहते हो, जैसे रूबियो साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े दोस्त हैं, पर दोस्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन, मतलब डायरेक्टली ना ले पर इनडायरेक्टली, तो फर्क पड़ रहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम होना चाहिए। ये सैंक्शंस वगैरह जो है ये टेम्पररी है, कभी कभी वो उठा देते हैं, फिर कहते नहीं हम फिर लगा देंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी दिक्कत हो जाती है, सप्लाई चेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सैंक्शंस की नीतियों से हम लोग खुश नहीं हो सकते और कभी भी खुश नहीं हो।
0: पिनाक जी, आपने एक बेहद जरूरी शब्द कहा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आज की इस दुनिया में हर देश या हर उभरता हुआ देश या हर विकसित देश कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन उनके लिए लाभकारी हो। क्या लगता है कि जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं अब या अब के बाद या इस विश्व की जो परिस्थिति है उसके बाद, इस बात पर निर्भर करेंगी कि सप्लाई चेन जिन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको कितना लाभ देती हैं, और अब हम म्यूचुअल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के विश्व की तरफ जा रहे हैं?
1: देखिये, वो तो मल्टीलैटरल WTO जो एग्रीमेंट्स थे वो तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों के धक्के से उसको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट, पर जो उसको मानते हैं उसके साथ तो चल रहा है, पर अब सब लोग बायलैटरल की तरफ झुक रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि जो सबसे बड़ा इकोनॉमी दुनिया में है वो अगर कहता है कि हम नहीं मानते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, एक तरफा उन्होंने वो डिसीजन लिया है। इसीलिए भारत भी EU के साथ बायलैटरल कर चुका है, उसके बाद नॉर्डिक स्टेट्स जो है उनके साथ भी करेंगे, सबके साथ ही अब करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है और उससे सप्लाई चेन्स बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए भी नीतियां बदलनी पड़ती है, और इंडिया बदल रही है नीति क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई चेन्स के जो कई हब्स है वो अब यहाँ बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है, पर बायलैटरल हो जाए तो ठीक है, वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अब जब मल्टीलैटरल आप मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं हम, तो मल्टीलैटरल जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जब हो जाता है तो तब फिर मामला फिर बैक टू नॉर्मल हो सकता है, पर नॉर्मल नॉट इन द सेंस कि जो दुनिया पहले थी जहां मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सब मानते थे, पर वो दुनिया नहीं रहेगी, अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स की दुनिया में हम पहुंच गए।
0: तो पिनाक साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हो, जब मध्यस्थता ना हो पाए, तो किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं सरकारें? आपके तजुर्बे से आप क्या बता सकते हैं श्रोताओं को कि वो कौन से नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं जिन पर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि चलिए हम अब इन पॉइंट्स पर एक दूसरे से सहमति जताते हैं और अब आगे चलकर हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहेंगे?
1: ट्रेड का जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट्स काफी हो जाती हैं कि अच्छा इस आइटम पर हम ये करेंगे, उस आइटम पर इतना ड्यूटी लगाएंगे, पर कुछ आइटम हमेशा बच जाती है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट है उस आइटम को हम चाहते हैं कि कम ड्यूटी लगे, और वो अपनी तरफ से बोलेंगे कि नहीं इस पे आप जीरो ड्यूटी कर दें। देखिए, अमरीका ने जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये एक नीति अपनाई है कि जिन देशों के साथ हमारा एडवर्स ट्रेड इंबैलेंस है, यानी जो लोग हमें ज्यादा बेचते हैं और हम उन्हें कम बेचते हैं
0: जी,
1: उनके साथ हमारा रुख बदलेगा, और उन्होंने बदला भी चाइना के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे फेवर में है। वो 40-45 बिलियन डॉलर है। अब अमेरिका की ये नीति के बजाय अब वो ज्यादा हमको बेचना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ज्यादा बेचते हो पर हम नहीं बेच पाते हैं क्योंकि आपके टैरिफ ज्यादा है। और हमारी तरफ से हमने बोला ठीक है, आप ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो बात हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा कम कर देंगे टैरिफ आपके अच्छे जो गुड्स हैं उन पर। फिर एक और बात थी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो हमने मना कर दिया कि वो हम नहीं खोलेंगे डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि करोड़ों लोग इस पे निर्भर हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही हैं पर कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, तो इसलिए उनका जो जीवन है हम नष्ट नहीं करना चाहते। तो इस पे तो हम अटल रहेंगे मुझे लगता है, पर बाकी जितने भी चीज है उनको दूसरी जगह कंसेशंस दे देंगे। तो इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो बैठ के कई हो जाता है फिर कुछ बाकी रह जाता है, तो फिर बाकी चीजों पे जाके चर्चा होती है अंदरूनी भी, फिर बैठकर भी दूसरे मुल्क के साथ जो बैठते हैं उसके भी सब चर्चा होती है और तब जाके डिसीशन निकलता है। फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है, पर एक कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है।
0: बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और इसी बीच जो ये एक बदलता विश्व प्रारूप हमारे सामने है और किस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चलता ही जा रहा है, अभी फिलहाल उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए भारत चीन रिश्ते कितने अहम हो जाते हैं? भारत ने अब चीन के साथ व्यवसाय दोबारा धीरे धीरे धीमे धीमे ही सही ग्रेजुअली ही सही दोबारा शुरू किया है। चीन और रूस के रिश्ते हम सभी जानते हैं कि बेहद मजबूत हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमरीका साथ नहीं है, वैसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारत और चीन भी साथ नहीं है, लेकिन भारत और चीन ज्योग्राफिकली बेहद करीब हैं और हम जानते हैं कि इससे पहले आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते कितना ये तय करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत रहते हैं?
1: ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कि चीन भारत और अमेरिका,
0: जी
1: इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो मतलब इंटरेस्ट्स हैं वो अलग अलग हैं।
0: जी
1: और इसीलिए चीन के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन भी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है
0: बिल्कुल,
1: और सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता
0: बिल्कुल,
1: वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वो 90% कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहां पहुंचे थे बीजिंग उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए दबाव तो वो ट्रेड भी यूज करते हैं लोग दबाव बनाने के लिए कि अगर आपके पास एक मोनोपोली हो किसी आइटम का तब दूसरों को जब लेवरेज करते हैं तो आप फायदा देखते हैं अपने देश के लिए। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड भी बहुत बड़ा है और हमारा जो ट्रेड है वो एडवर्स बैलेंस है हमारा, हम उतना नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। और आप आज बाजार में देख लीजिए चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, कितने भरे हुए हैं। चाइना हमारे यहाँ मोबाइल बनाते हैं, कई चीजें हैं जो उसपे होता है, इसलिए चाइना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े इंटरडिपेंडेंट है, पूरी दुनिया ही आज इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए नेचुरली ये नेगोशिएशंस करके, और इंडिया ने भी देखा कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाता है तो हमें फिर दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, हमें दूसरों के साथ भी हमें ट्रेड की जो चिंता है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो सोचना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में चाइना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई चीजों में तो वो अमेरिका से भी आगे चला गया, तो इसलिए हमें ये रियलिस्टिक पोजीशन तो लेना ही पड़ेगा। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो तो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए
0: बिल्कुल। मीनाक्ष साहब, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, टैक्स भरते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका के ग्रोथ रेट में बहुत अहम योगदान देती है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
1: देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल कर रहे हैं। अब जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा दिल्ली में अपने स्पीच में कि जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी हम कर रहे हैं शायद उससे भारतीयों को ज्यादा फायदा मिले, तो देखते हैं कि उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या बनेगी और उसमें फाइनली क्या होगा इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने।
0: पिनाक जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत बोलो राम से सुनिधि चौहान की आवाज़ है। अजय संजय अग्रवाल ने इस गीत को लिखा है।

और लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में लता मंगेशकर के साथ भूपेंद्र को। गीत लगाया विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत गोरा और काला। इस फिल्म में उषा मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी और साथी हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रामलीला के इस गीत को गाया था दीप्ति पॉल ने, सिद्धार्थ गरिमा ने इसका संगीत तैयार, इसको लिखा था और संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली से।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अंतराल के बाद अगला प्रसारण।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
5: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
6: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
5: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
7: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
8: Several key agreements were signed.
9: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
10: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
6: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
10: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9. the headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
5: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
4: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
2: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides, Satavadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. Among those honored with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar, Taga Ram Bhil, Ratilal Mohanlal Borisagar, Swami Brahmadev and Kumar Bose. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
4: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India or SIDBI today, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
6: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
4: The initiatives launched include the SIDBI Maxfin Mart, a digital platform to help MSMEs access machinery through a structured marketplace supporting price discovery, standardization and technology adoption. The Finance Minister also launched the RRB co-lending portal to operationalize partnerships between SIDBI and regional rural banks for improving credit flow in rural and underserved regions. Another major initiative launched was MORE, or Modernization of Rural Enterprises, a program aimed at providing transformational support to 10,000 rural micro and artisanal units over the next 3 years through cluster-based interventions. SIDBI Chairman and Managing Director Manoj Mittal said, The initiative would improve credit access, promote technology adoption, and support modernization of rural enterprises, making them more competitive and future-ready. The Indian Army, NDRF, and the State Disaster Response Force, SDRF, are leading a rescue operation at the Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir following a technical malfunction in the gondola cable car system. The fault caused a sudden suspension of services between the base station and Phase 1, leaving several tourists stranded today. In a statement, the Indian Army said that following a distress call from local authorities, rescue teams were swiftly mobilized to the site. According to the Indian Army, a total of 65 cable cars were affected due to the technical malfunction. Over 286 stranded tourists have been rescued by the personnel of Army, NDRF, SDRF, Gulmarg Police, Special Operations Group, GNK Armed Police and other units in the security agencies. Lieutenant Governor Manoj Sinha is personally monitoring the situation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on Air app. Welcome back. You're listening to News at 9. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st of July last year. Our correspondent has filed this report.
7: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held talks with his Japanese counterpart Motegi Toshimitsu in New Delhi. In his remarks during the meeting, Dr. Jaishankar said India and Japan have a special strategic and global partnership.
8: Between India and Japan, of course, we have a special strategic and global partnership, and that signals that our ties have a larger implication, importance, impact. Today, I look forward to discussing our bilateral cooperation, to discussing global and regional issues, particularly in this current situation, and West Asia is important.
4: Foreign Secretary Vikram Misri today received a call from Deputy Foreign Minister for Political Affairs of Iran, Majid Takht Ravanchi. The External Affairs Ministry said in a social media post that the discussions focused on recent developments in the region and a review of bilateral cooperation. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has written to all the states and union territories calling for safe, secure and successful conduct of NEET UG 2026 re-examination scheduled for the 21st of next month. Mr. Pradhan wrote to all chief ministers, lieutenant governors and administrators across the country seeking their cooperation in this regard. A Delhi court today convicted Congress leader Alka Lamba in a case related to an assault on police personnel during a protest at the Jantar Mantar in 2024. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pawar convicted Lamba and fixed 5th of June to hear the arguments on Lamba's sentencing. The prosecution had accused Lamba, the president of the All India Mahila Congress, of obstructing police and blocking a public road while holding a protest at the Jantar Mantar on 29th of July 2024. Members of the Delhi Gymkhana Club today moved to the Delhi High Court against the centre's order asking the club to hand over its premises to the government by the 5th of next month. The court listed the lawsuit for hearing tomorrow. The centre has asked the Gymkhana Club in Latians, Delhi to hand over its premises by the 5th of June, citing that the 27.3-acre land parcel was required for strengthening and securing defense infrastructure. News, Justin, the rescue operation in Gulmarg, where around 300 tourists were stranded, has concluded and all the stranded persons have been evacuated safely. In some other news, in Pakistan, a speeding bus collided with a bus parked along a roadside in Northwest region today, killing at least 17 people and injuring 5 others. Police said the accident took place on the Swat Expressway in Mardan district. Authorities said the identities of the deceased have yet to be confirmed, while rescue teams continued relief operations at the scene. The bus was carrying passengers to the scenic Swat Valley. Police said the victims belonged to Upper Deer and Bajor districts. In business news, benchmark domestic equity indices ended on a bullish note today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. We have a report.
9: The Sensex surged 1,074 points, or 1.4%, to close at 76,489, while the Nifty rose 312 points, or 1.3%, to settle at 24,032. In the broader market, at the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 Index advanced 0.9%, while Small-Cap 100 Index jumped 1.4%. Markets rallied early in the session as a pullback in crude oil prices cooled inflationary worries. In the forex market today, the rupee appreciated by 47 paise to close at 95 rupees and 23 paise against the US dollar. In the global crude oil market, Brent crude was trading 5.5% down at $97.78 per barrel when reports last came in. Vaibhav J. Srivastav for Akashvani News.
4: The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 connections. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for warm night conditions over Madhya Pradesh, Orissa, Telangana, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Uttarakhand till tomorrow. The IMD has also predicted hot and humid weather over Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Bihar, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, North Interior Karnataka and Northeastern region tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In the 57kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelaman Amangal Diev 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzad Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
10: Adab. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शमीम अहमद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायरन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनअतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरक कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा दिल्ली पंजाब उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
5: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
10: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
11: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
10: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ F से शुरू होने वाली 3 चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की जरूरत को उजागर किया है। ये 3 चीजें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और जर मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मजाहिमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीद कारी के काम को तेज़ रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्द अमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज़ किया जा सके। بھارتی فوج اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی قومی فورس NDRF اور ریاستی فورس SDRF جموں کشمیر میں گلمرگ گنڈولا میں راحت اور بچاؤ کی ایک کاروائی کی سربراہی میں شامل تھے. گنڈولا کیبل کار کے نظام میں تکنیکی خرابی کے بعد یہ کاروائی کی گئی. بیس اسٹیشن اور فیس ون کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے. ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں. بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں. اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے. ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے

0: कि वो जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाएं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को नीट यूजी 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से यह भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैन अवी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यह इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगर्म रही है। यह तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्वस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिसो मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़रा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायजा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहम नौयत के दीगर बैन अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आजाद और खुले भारत बैरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नजर वज़रा पिछले बरस 1 जुलाई को Washington DC में हुई तबादला ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में यह रिपोर्ट पेश की है।
1: इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक़िद हो रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है जिसकी ज़्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को तआवुन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुजाहिम हो। क्वाड ने एक मुस्बत और अमली एजेंडा अख्तियार किया है जिसमें हम असर मसाइल और चैलेंजों पर तवज्जो दी जा रही है। इन मामलों में सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निज़ाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने जमीनी सतह पर अमल दरामद में तेजी लाने, मेयार की निगरानी को मजीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सरकार मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मगरबी एशिया में हालिया सूरत हाल के बारे में

0: नई दिल्ली में मुनाकिदा बैन वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में LPG की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन योमिया कर दी गई है।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसुलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे राबते में है। दिल्ली जिमखाना क्लब के मेम्बरान ने आज मरकज के उस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जिमखाना की इमारत हुकूमत के सुपुर्द कर दें। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलकालांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सजा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दा नांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ येलमेन को 2 के मुकाबले 4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5 के मुकाबले 7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाते। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एलरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु
0: जी।
1: शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं
0: जी। अच्छा, जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से
1: जी। थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है. एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं. उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
0: पाएंगे. तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
0: जी,
1: कि हमारे जेरेटिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
0: जी.
1: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी.
0: और एक और सवाल आया है हमारा,
1: इसका पार्ट टू भी
0: ये, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस, के लिए क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
1: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा. सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा. इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब

0: आपसे आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा. हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं.
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा.
0: जी
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी. हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है. वो
0: जी
2: फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता
0: जी
2: हो. कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है. तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो
1: जी
2: लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी जी जी मतलब
2: एक
1: आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी. जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी. इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567. ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है. कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं. उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है.
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए. और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए. जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567. तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं. जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं.
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप. अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही.
0: थैंक यू अरुण पवार जी. मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल. आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल. अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है. वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं. तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है.
1: जी, और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान है. उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा.
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी,
1: जी
0: आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी. जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी विद ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता. दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा

0: 14567 उसका 112 और 108 के साथ. तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में. चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है. इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी.
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी.
0: जी, इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो.
0: जी, जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी. और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी.
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल. ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं. मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चलते नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं. तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके. जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है. ये भी हो सकता है कि कुछ 10% जो भी थोड़ा वो छूट भी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं. जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी कि दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो.
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए. हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं. तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं. वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है. तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे.
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का. मोनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है.
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी. हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए. तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं. तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है. तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होकर चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें.
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं.
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके. तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं.
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए है, आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है. ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है, जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैक एंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन है। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद। मैं श्रीपद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है, कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को।
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है, इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका कोई भी दुविधा है तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
4: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
4: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
4: जी। और जी मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, फिर पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही।

0: जी, प्रेस के तहत और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेन जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी,
2: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
2: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है, आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्होंने कहा स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने, मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने।
1: जी, राजेश नीमा जी।
4: जी
1: जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी,
4: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा।

0: पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मनाली जी,
2: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
2: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
2: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पर जोड़ते जाएँ।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा, सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा के इस बारे में धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। रात्रि के 10 बजे हैं। आपकी फरमाइश लेकर मैं हूँ आपके साथ साधना जैन। पहला गीत हमने लिया है हीर रांझा फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, कैफी आज़मी ने इस गीत को लिखा है और मदन मोहन ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं जो मेरे हाथों में हैं। दिल्ली प्रीत बिहार से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक शास्त्री, सपना नमन बुलबुल आदित्य जैन ने, अशोकनगर गुना से ममता राकेश जैन, प्रियंका विक्की जिम्मी विवेक जैन ने, कोटा से सरोज सुरेश योगी, मुंगावली से नीता अर्चना शालू जैन, पालीताना से शशि जैन और उसकी सखी मधु हुरकट ने। आप सभी की पसंद पर हीर रांझा फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में। महबूब ने इसका गीत लिखा है और इस्माइल दरबार ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है और चिट्ठियां मुझे भेजी हैं। गौतम नगर भोपाल से श्री सक्सेना, अनीता सक्सेना, संगीता सक्सेना, प्रथम सक्सेना, निर्मल भटेजा, संगीता भटेजा, मीनाक्षी भटेजा, अनुज भटेजा, अमन, शानू, राजीव भटेजा ने इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सबकी पसंद पर भेज रहे हैं हम ये गीत। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से, लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज़ है, गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है भोपाल से विनोद आर्य, शांता आर्य, कृष्णा जैन, कमलेश पंजाबी, केएल पंजाबी, किरण ग्रोवर, सुनील जैन और सुधीर जैन ने।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत लव स्टोरी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ है। आनंद बख्शी ने इसका गीत तैयार किया है और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है साहिल समीर सम्यक, शुभ्रा सौम्या, कृतिका अंकिता जैन और शार्विल जैन ने। इसी गीत को पसंद किया है जयराम प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: हम्म।

लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आरडी बर्मन का। आप सभी ने हमें पसंद भेजी है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ने। इसी गीत को पसंद किया है दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मालवी सिंगापुर से सालिक पुजारी। आप सभी की पसंद पर हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत आपके लिए।

और लीजिए कार्यक्रम के अंत में खोया खोया चांद फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं स्वानंद किरकिरे, अजय की आवाज़ में। स्वानंद किरकिरे ने इसका गीत लिखा है और शांतनु मोइत्रा ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले ने, और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामस्वरूप रतोनिया का ताल झप ताल में तबला वादन। सारंगी पर आपके साथ हैं प्रवीण शेवलीकर।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामस्वरूप रतुनिया का झप ताल में तबला वादन। सारंगी पर आपके साथ थे प्रवीण शिवलिकर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार और 11:05 पर इंग्लिश में समाचार हम दिल्ली से आपको सुनवाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Bhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Bhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. Ajay Shankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sanshu border outpost in the morning tomorrow, where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from five borders district will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medal today. And that's the end of the news bulletin.
4: यह आकाशवाणी भोपाल है. रात्रि के 11:10 हुए हैं. अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है. कल सुबह 5:53 पर इन्हीं मीटर्स पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए, जय हिंद।